सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर सुबह 9 बजे और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना से।

0: भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: અંજલિ બોન, ગીત તો આવીશું પૂરું, અને ગીતને બાદ એક વખત ફરી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોનું આપણે સ્વાગત કરો. આપણે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમકે ગીત થકી પહેલા આપણે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતે કરવા રહ કે પશુધન મેં પૌષ્ટિક આહાર થકી મટેગા કુપોષણ.
1: હવે જાગૃતિ બોન, આના વિશે માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહે મનીષ સર, તો સપ્તકી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત મોરે કર આપણી વાતે.
0: હોવે
1: સર નમસ્કાર.
2: જી અંજલિ જી નમસ્કાર, ઓર સભી વાગડવાસીઓ કો ભી મેરા બહોત બહોત નમસ્કાર.
1: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ હમ હમારે આજ કે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જૈસા કે હમારે સભી શ્રોતા સાથી જાનતે હૈ કે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં હમ ખેતી સે જુડી, પશુપાલન સે જુડી, સાથ હી હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો અપને સ્વાસ્થ્ય કી દેખભાલ કે સાથ સાથ અપની ખેતી કે કાર્યો કો કૈસે કરે, એસે હી ઢેર સારી જાનકારી કો લેકર હાજર હોતે હૈ. તો એસે મેં આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં વિષય જુડને જા રહા હૈ કે પશુધન જો હમારે હોતે હૈ ઉનમેં પૌષ્ટિક આહાર સે કુપોષણ કી જો સમસ્યા હમે દેખને કો મિલતી હૈ ઉસસે હમ નિજાત પા સકતે હૈ. ક્યુંકી હમ દેખતે હૈ કે સભી લોગ વિચાર કર રહે હોંગે કે પશુઓ મેં ભી કોઈ કુપોષણ હોતા હૈ, લેકિન હમ દેખતે હૈ કે યે સમસ્યા મનુષ્ય કે સાથ સાથ પશુઓ મેં ભી હોતી હૈ. તો આજ કાર્યક્રમ મેં હમ આપકે માધ્યમ સે યહી જાનેંગે કે પૌષ્ટિક આહાર જબ હમારે પશુઓ કો મિલેગા તો કિસ તરીકે સે વો કુપોષણ કે સમસ્યા સે બચ પાએંગે.
2: અંતલીજી બહોત સામાન્ય બાત હૈ કે કુપોષણ સભી મેં પાયા જાતા હૈ, ચાહે વો મનુષ્ય હો યા પશુધન હો.
1: જી હા,
2: સભી મેં કુપોષણ કી સમસ્યા હોતી હૈ. ઓર કુપોષણ કી સમસ્યા જબ હોતી હૈ તો ઇસકે દુષ્પરિણામ ભી હોતે હૈ.
1: જી બિલકુલ.
2: યદિ હમ પશુધન મેં કુપોષણ કી બાત કરે તો ઇસકા જો કારણ હૈ એક બડા જિસકો હમકો સમજના જરૂરી હૈ.
1: જી બિલકુલ.
2: હમ અગર હમારે વાગડ ક્ષેત્ર મેં બાત કરે તો પશુધન કે પોષણ કા પ્રમુખ કારણ હૈ ચારાગાહ કા કમ હોના યા ચારાગાહ કા અતિક્રમણ કી ભેટ ચડતે જાના.
1: જી બિલકુલ.
2: इसके चलते किसान और पशुधन पालक के सामने चारे की समस्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है.
1: जी बिल्कुल.
2: और एक दुधारू पशुधन को प्रतिदिन 5 किलोग्राम हरे चारे और 15 किलो भूसे अथवा सूखे चारे की आवश्यकता होती है, ये सामान्य रूप से माना जाता है. और इसी तरह यदि हम बकरी की बात करें तो 3 से 4 किलो चारे की आवश्यकता होती है, जिसमें से 1 किलो के लगभग उनको सूखा चारा दिया जाता है और 200 से 250 ग्राम दाना दिया जाना चाहिए.
1: जी बिल्कुल.
2: अगर हम बात करें भूसे की तो एक सामान्य पशुधन के लिए जो हमें भूसे की आवश्यकता होती है,
1: जी जी,
2: अगर उसको 15 किलोग्राम भी माना जाए तो आज उसका बाजार मूल्य 75 से 90 रुपए के लगभग बैठता है. यानी कि एक किसान को प्रतिदिन 75 से 90 रुपए खर्च करने होंगे एक पशुधन के लिए. अब हम यदि देखें कि इसकी समस्या क्यों हो रही है, तो किसान तो भूसा तैयार करते हैं अपने खेत से, कई तरह का भूसा उनके घर में निकल के आता है, पर आजकल व्यवसायिक उपयोग भट्टों में और इस तरह से जो भूसे का व्यवसायिक उपयोग बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से बजाय भूसा पशुधन को मिलने के बाजार में ऊंचे दामों पर बिक जाता है.
1: तो
2: ये बड़ी समस्या है कि हमारे पशुधन के लिए आज भूसा कम पड़ता जा रहा है.
1: जी बिल्कुल.
2: और कुपोषण की समस्या से साधारण रूप से पशुधन पालक के लिए पशुधन को पालना आज उनके बूते से बाहर होता जा रहा है. कहीं ना कहीं हमारे पशुपालकों के पास जो पशुधन कम होते जा रहे हैं ये उसका एक बड़ा कारण है.
1: जी जी.
2: जिसपे शायद हमें गहराई से ध्यान देने की जरूरत है. तो अब बात ये होती है कि भूखा और कुपोषित पशुधन यदि आपके पास है तो वो कब तक और कितना दूध देगा. तो पशुधन आहार की बढ़ती समस्या हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है.
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा. क्योंकि जैसा कि हम आपके माध्यम से जान पाए कि जिस तरीके से हमें पशु को सूखे और गीले चारे देने की आवश्यकता होती है, ऐसे में हम देखते हैं कि गीला चारा तो हमें कैसे भी मिल जाता है, लेकिन जो सूखा चारा होता है वो जैसा कि आपने बताया कि उद्योग धंधों में बड़ी बड़ी चीजों में आजकल काम में लिया जा रहा है, ऐसे में बाजार में जब हम इस चीज को लेने जाते हैं तो उसके दाम हमें बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं. ऐसे में हो सकता है कि पशुपालक जो किसान भाई है उसके पास इतने पैसे हो या न हो, तो इस वजह से हम देखते हैं कि पशुओं का जो कुपोषित होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है. तो यही सर अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि असंतुलित आहार किन समस्याओं को जन्म देता है।
2: जी अंजलि जी, वास्तविकता में ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस समस्या को नहीं जानेंगे
1: जी जी,
2: इसके उपाय की तरफ आगे बढ़ना मुश्किल होता है।
1: जी बिल्कुल।
2: तो असंतुलित आहार या जिस तरह का भोजन एक पशुधन को मिलना चाहिए, जिसमें सूखा चारा, हरा चारा, दाने की मात्रा और अन्य कुछ मिनरल्स हैं
1: जी जी,
2: जिनकी आपूर्ति जो है लगातार होती रहना चाहिए। अगर ये आपूर्ति नहीं हो पाती है तो असंतुलित आहार के कारण पशुधन में अनुवांशिक क्षमता से कम दुग्ध उत्पादन की एक समस्या होती है
1: जी जी।
2: छोटा दुग्ध काल होता है, यानी कि हम अगर सामान्य रूप से माने कि पशु ने 6 से 9 महीने तक दूध देना चाहिए, तो हो सकता है वो 2 महीने 3 महीने या 4 महीने अपने दुग्ध काल से आधे ही समय तक दूध दे
1: जी जी।
2: इससे दो ब्यात के बीच में अंतराल भी बढ़ता है कि लगातार जिस तरह से पशु को उत्पादन देना चाहिए वो उत्पादन हमको नहीं मिल पाता
1: जी बिल्कुल।
2: प्रजनन क्षमता पे भी ये प्रभाव डालता है और उनकी प्रजनन क्षमता में कमी आती है
1: जी,
2: अगर
1: जी।
2: लगातार असंतुलित आहार पशुधन को मिलता रहा है
1: तो जी बिल्कुल।
2: इसी के साथ में उपापचयी क्रियाएं जो हैं, जो पशु के पेट से संबंधित होती है, जिसमें पाचन तंत्र में ये महत्वपूर्ण स्थान रखती है
1: जी जी,
2: इसमें भी स्थायी तौर पे समस्याएं आना शुरू हो जाती है
1: जी बिल्कुल।
2: एक समस्या होती है जिसको दूध बुखार बोलते हैं, बाद में वो थनेला रोग में जाके परिवर्तित हो जाता है
1: जी बिल्कुल।
2: कीटोसिस की संभावना होती है और धीमा शारीरिक विकास, यानी कि पशुधन का जिस उम्र में जितना शारीरिक विकास होना चाहिए, चाहे वो ऊंचाई में हो, लंबाई में हो, या उसके शरीर में मांस का भरना हो, वो बहुत धीमा शारीरिक विकास होता है और वो उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए अंत में। इस सब के लिए हम ये सुनिश्चित करें कि अपने पशुधन को उच्च गुणवत्ता वाला स्वादिष्ट और संतुलित आहार मिले
1: जी बिल्कुल।
2: ये पहला महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा आपको आपके पशुधन के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम और चयापचय क्रियाओं को सही रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं, सभी ने बोला है कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर और सस्ता होता है
1: जी बिल्कुल। तो सर, इस तरीके से हम आपके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से ये जान पाए कि अगर हमारे पशु जो हैं, अगर हम उन्हें संतुलित आहार नहीं देते हैं तो ढेर सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। तो ऐसे में हमारे जो किसान भाई बहन हैं, वो अपने चारे की पौष्टिकता को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम इसके समस्याओं को जान पाए, अब इसके निदान की आवश्यकता हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहीं आप हमें बताइए कि किस तरीके से हम हमारे जो पशु को आहार दे रहे हैं उनमें इन सारी चीजों की पोषक तत्वों की पूर्ति कर पाए।
2: तो पशुधन पालक चारे की पौष्टिकता को कैसे बढ़ाए, इसके लिए हमारे पास स्थानीय स्तर पे जो उपाय उपलब्ध हो सकते हैं
1: जी जी,
2: हम जिन उपायों पर चर्चा कर रहे हैं उसमें से हमारे वागड़ के किसान साथी अपने यहाँ उपलब्ध वनस्पतियों में से उसको चुन सकते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: हरे चारे की कमी जो होती है वो एक मौसम विशेष में होती है, पर इस कमी के कारण पशुधन की जो निर्भरता होती है वो रेशेदार चारे यानी कि सूखे चारे पर बहुत बढ़ जाती है
1: जी बिल्कुल।
2: कुछ समय तो ऐसा होता है जब उनके भोजन में या चारे में 100% सिर्फ सूखा चारा ही बच जाता है। तो सूखे चारे की पौष्टिकता को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें कुछ खनिज लवण हम मिला सकते हैं
1: जी जी।
2: दूसरा है कि स्थानीय उपलब्धता के अनुसार सहजन के पत्ते इसमें मिलाए जा सकते हैं, पीपल के पत्ते इसमें मिलाए जा सकते हैं, सुबबूल और हमारा देसी बबूल ये भी बहुत पौष्टिक होते हैं
1: जी जी।
2: इसके अलावा नीम, गुलर, बरगद, शहतूत आदि पत्ती पशुधन को आप सूखे चारे के साथ मिला के खिला सकते हैं। सरसों की और दूसरे हरे चारे को भी सूखी घास और कड़बी के साथ कुट्टी बनाकर खिलाने से हमें दो बड़े फायदे होते हैं कि एक तो चारा व्यर्थ नहीं जाएगा
1: जी हाँ,
2: और इससे चारे की बचत भी होगी, जो हम सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि चारे की बचत मतलब पैसे की बचत
1: जी बिल्कुल। सर,
2: तो आहार में यदि खनिज लवण की कमी को दूर करना है हमको, तो हम अपने पशुधन को प्रतिदिन 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर पाउडर बना के खिला सकते हैं, जिसके बारे में वाग्धारा के साथी लगातार हमारे किसान भाइयों को बताते रहते हैं कि किस तरह से इसको तैयार किया जाता है।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम हमारे श्रोता साथियों को कह सकते हैं कि हमें हमारे जो पशु हैं उनमें पौष्टिक जो तत्व होते हैं उनके आहार में शामिल करने के लिए स्थानीय स्तर पर जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन्हीं को ही काम में लेना है। ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे गांव के जो क्षेत्र हैं वहां पर ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। ऐसे में इनका संरक्षण करना हमारे किसान भाई बहनों का, पशुपालक भाइयों का कर्तव्य है, ताकि वो अपने जो पशुधन है उनके आहार की पौष्टिकता को बढ़ा सके। तो सर, जैसा कि बहुत अच्छी बातें चल रही है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि जो चारे की समस्याएं हमें देखने को मिल रही है उससे हमारे किसान भाई बहन कैसे छुटकारा पा सकते हैं।
2: चारे की समस्या से छुटकारा पाना बहुत कठिन तो नहीं है, यदि इस दिशा में हम प्रयास शुरू करें।
1: जी हाँ।
2: तो एक तो सामान्य सी चीज हो सकती है कि हर गांव में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां पे बड़े या छोटे पशुधन को न पाला जाता हो।
1: जी बिल्कुल।
2: तो सारे समुदाय के लोग मिलके एक किसान समूह बना सकते हैं। तो किसान समूह बना के चारा उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।
1: जी बिल्कुल।
2: जिससे चारे के बढ़ते दाम को हम नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि हमें चारा खरीदना ही नहीं होगा।
1: जी जी।
2: तो हमारी बाहर के चारे के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल सर।
2: या शून्य हो जाएगी। इसके लिए ग्राम स्तर पे हम चाहें तो चारागाह विकास समिति के माध्यम से चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऐसी जगहों का चुनाव कर सकते हैं जहां पे हम चारे का और अधिक उत्पादन कर पाएं। हमारी उन आवश्यकताओं से अधिक जिस समय हमको चारा उपलब्ध नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं हम बाजार की तरफ देखने लगते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: इसके साथ ही यदि हम बात करें तो मनरेगा में कई सारे ऐसे काम होते हैं, तो हम इन कामों में अगर चारा उत्पादन को भी जोड़ें तो हो सकता है कि बड़ी आसानी से पूरे साल के चारे की आपूर्ति हम अपने ही गांव में अपने ही संसाधनों से सुनिश्चित कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम आपके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से ये जान पाए कि पशुधन में पौष्टिक आहार से हम कुपोषण की समस्या को दूर कर सकते हैं, हमने ढेर सारी बातों को जाना कि अगर पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलता है तो उनमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, साथ ही पौष्टिकता किस तरीके से हम चारे में बढ़ा सकते हैं और चारे की समस्या से हम कैसे छुटकारा पाएं, ये सारी बातों को हम जान पाए। तो सर, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को, पशुपालक जो भाई बहन है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: अंजलि जी, मैं अंत में यही संदेश देना चाहूंगा कि अभी का जो बारिश का समय है वो हमारे लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वरदान है। इस समय में यदि हम अपने आसपास की खाली जमीनों को, वहाँ उगने वाले चारे को संरक्षित करें, अपने जो चारागाह हैं उनमें इस प्रकार के प्रयास करें जिससे वहाँ का चारा आगामी समय के लिए हम इस्तेमाल कर पाएंगे, तो उसको अभी से संभाल के रखें।
1: जी बिल्कुल।
2: अगर हम ये सब करते हैं तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हमारे जो वागड़ के किसान हैं, पशुपालक हैं, इन्हें ऐसे समय में जब हमें बाजार के चारे की तरफ देखना होता है, इस समस्या से निजात पाना बहुत आसान होगा।
1: जी बिल्कुल।
2: और इसके लिए सामलात की भूमियों को हम संरक्षित करें।
1: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने बहुत ही प्यारा सा संदेश हमारे किसान भाई बहनों को दिया है, तो सर आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: वागड़ रेडियो और सभी सुनने वाले श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: અંજલિ બોન, જેમ કે આજે મનીષજી સરાઈ વતન, એણે આપણને ઘણા ઘણી વાતે બતાડી કે પશુધનને પૌષ્ટિક આહાર થકી હારતે મટેગા કુપોષણ, ને એનામે આપણે જાણ્યું કે સંતુલિત આહાર હું કહેવાય ને અસંતુલિત આહાર કઈ બીમારીને જન્મ આલે હે, એના સાથે આપણે જાણ્યું કે આપણે જે કિસાન ભાઈ બોન હે એ પશુધન તો રાખે છે, તો એ જે ચારો રાખે હે પશુને ખવડા પર ભલે એમને પૌષ્ટિકતા હારતે બઢાવી શકે, ને કઈ વખત એવું થાય અંજલિ બોન કે આપણે ચારાની સમસ્યા આવી જાય તો એ ચારાની સમસ્યા થકી આપણે હર છુટકારો પાઈ શકે, આ સબ વાતે આજે આપણે મનીષજી સર આપણે કિસાન ભાઈ બોનને બતાડી।
1: હવે તો જાગૃતિ બોન, વાતે તો ઘણા કની થઈ ગઈ હે, ને ટાઈમ ભી થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનો, તો સૂટા તો પડા પણ સાથે પહેલા હામરી લઈ કર ગીત ને મોરે પડા સૂટા
0: હોવે।

अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भयन बोनू आ लक्षण आपने आपने में देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोलो आपे कारे विचार करियो है कि जया पेड़ की छांव में आपने रह हूं या आपने ने कितनी शांति मिले है, जया हवा में आपने हाल हूं ई भी आपना थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपने हरते जीवंगा, प्रकृति आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा दूंगा, पानी में बचा दूंगा, मैं अपनी धरती में जीवन दान लूंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था नाना अंजलि बुन हूँ था का अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा। होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ है। कशिश, आज हम एक ऐसे रिश्ते की बात करेंगे जो बच्चों के जीवन को अनुभव, संस्कार और अपनापन दे सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हमारी बातचीत का विषय है बच्चों को परिवार के बुजुर्गों से जोड़ने के लाभ को लेकर। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि कहते हैं कि घर की दीवारें ईंट पत्थर से बनती है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन घर को घर बनाते हैं उसमें रहने वाले रिश्ते, और इन रिश्तों में कशिश बुजुर्गों का स्थान उस पुराने पेड़ की तरह होता है जिसकी छांव में कई पीढ़ियां सुकून पाती है।
0: बिल्कुल।
1: छोटा साथियों, आज के समय में बच्चों की दुनिया बहुत बदल गई है। मोबाइल की स्क्रीन पर उन्हें हजारों कहानियां मिल जाती है, इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब मिल जाता है और मनोरंजन के लिए उनके पास कई साधन हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि दादा दादी और नाना नानी की गोद में बैठकर सुनी गई एक कहानी का अनुभव किसी स्क्रीन से मिल सकता है?
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, बुजुर्गों के पास केवल पुरानी यादें नहीं होती हैं, बल्कि जीवन का अनुभव, परिवार की कहानी और स्थानीय संस्कृति, लोकगीत, लोक कथाएं और रिश्तों को निभाने की समझ भी होती है।
0: बिल्कुल।
1: जब बच्चे उनके साथ समय बिताते हैं तो वे किताबों से अलग एक ऐसी शिक्षा पाते हैं कशिश, जो सीधे जीवन से आती है। आज कार्यक्रम में हम यही समझेंगे कि बच्चों को परिवार के बुजुर्गों से जोड़ना क्यों जरूरी है, इससे बच्चों के व्यवहार और व्यक्तित्व में क्या बदलाव आते हैं, और परिवार इस खूबसूरत रिश्ते को मजबूत बनाने में कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: बातें ढेर सारी कार्यक्रम के माध्यम से रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
0: जी हाँ दिलीप जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत कर चुके हैं हम, और बात कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों को परिवार की बुजुर्गों से जोड़ने के लाभ क्या हो सकते हैं। अंजलि जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की तेज जिंदगी में बच्चों का समय पढ़ाई, मोबाइल, टीवी या दूसरी गतिविधियों में ही बढ़ चुका है।
1: बिल्कुल,
0: कई परिवारों में तो बच्चों और बुजुर्गों के बीच बातचीत का समय भी कम होता जा रहा है। बच्चे अपने आसपास की दुनिया को डिजिटल माध्यमों से जान रहे हैं, लेकिन घर के बड़े लोगों के अनुभवों से मिलने वाली सीख उनसे दूर होती जा रही है। इसलिए परिवार को ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जहां बच्चे बुजुर्गों के साथ समय भी बिताएं और उनके अनुभवों को भी समझें।
1: जी हाँ, यही कशिश अब बात आती है, बुजुर्ग बच्चे के लिए अनुभव की जीवित किताब होते हैं। श्रोता साथियों, किताबों में बहुत सारी जानकारियां मिलती है, लेकिन बुजुर्गों ने अपने जीवन में जिन परिस्थितियों का सामना किया है उनसे मिलने वाली सीख अलग होती है। दादा दादी या नाना नानी बच्चों को अपने बचपन के अनुभव बता सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने कठिन परिस्थितियों में कैसे काम किया, परिवार को कैसे संभाला, खेती बाड़ी कैसे होती थी, त्योहार किस तरह मनाए जाते थे और पहले गांव का जीवन कैसा था। ऐसी बातें कशिश बच्चों को अपने परिवार और समाज के इतिहास से जोड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें पता चलता है कि आज जो सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं उनके पीछे पिछली पीढ़ियों की मेहनत भी रही है।
0: जी जी,
1: बुजुर्गों के पास कहानियों का एक बड़ा संसार होता है। लोक कथाएं, पंचतंत्र जैसी कहानियां, स्थानीय किस्से और अपनी जीवन से जुड़ी घटनाएं बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है।
0: बिल्कुल,
1: कहानी सुनते समय बच्चा केवल श्रोता साथियों मनोरंजन नहीं करता बल्कि उनमें छिपी सीख को भी समझता है। किसी कहानी के माध्यम से उसे ईमानदारी, साहस, मेहनत, दया, सहयोग और समझदारी जैसी बातें आसानी से समझाई जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: सबसे अच्छी बात यह है कि सीख बोझ की तरह नहीं लगती बल्कि कहानी के साथ सहज रूप से बच्चे के मन में उतरती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हमारे गांवों और क्षेत्रों की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। स्थानीय बोली, लोकगीत, पारंपरिक खेल, त्योहार, खान पान और रीति रिवाज, अंजलि जी, ये सभी हमारी पहचान का एक हिस्सा है। बुजुर्ग इन परंपराओं के सबसे अच्छे जानकार होते हैं। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि जब बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी से स्थानीय गीत सीखते हैं, पुराने खेल खेलते हैं या त्योहारों से जुड़े परंपराओं के बारे में सुनते हैं तो वे अपनी संस्कृति से जुड़ते भी हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे उनमें अपनी जड़ों के प्रति सम्मान पैदा होता है। आज जैसा कि दोस्तों बच्चों को तुरंत परिणाम पाने की आदत होती जा रही है।
1: जी जी,
0: मोबाइल पर एक क्लिक करते ही मनोरंजन शुरू हो जाता है। ऐसे समय में अंजलि जी, बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करना बच्चों को धीरे धीरे सुनना और धैर्य रखना सिखाता है। जब बच्चा किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनता है तो वह सामने वाले की भावनाओं को समझना भी सीखता है।
1: जी जी,
0: ये आदत जो है वो उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत उपयोगी होती है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा, यही बात आती है, बुजुर्गों से भावनात्मक सुरक्षा मिलती है बच्चों को। जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों को केवल भोजन, कपड़े और शिक्षा ही नहीं चाहिए, उन्हें प्यार, अपनापन और बिना किसी डर के अपनी बात कहने वाला कोई व्यक्ति भी चाहिए। कई बार बच्चे अपने मन की बातें बुजुर्गों से साझा कर लेते हैं जिन्हें वे माता पिता के सामने कहने से झिझकते हैं। बुजुर्गों का शांत व्यवहार और अनुभव बच्चों को भावनात्मक सहारा दे सकता है। बच्चों को यह एहसास होता है कि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार है।
0: बिल्कुल,
1: जब बच्चे बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं तो वे उम्र, अनुभव और जरूरत का सम्मान करना सीखते हैं। वे समझ पाते हैं कशिश कि परिवार में हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि घर में बुजुर्गों की बात सम्मान से सुनी जाती है और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है तो बच्चे भी वही व्यवहार सीखते हैं और यही संस्कार आगे चलकर उन्हें समाज में दूसरे लोगों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि इससे बच्चों को पारंपरिक ज्ञान भी मिलता है। जैसे कि साथियों, बुजुर्गों के पास केवल कहानियां ही नहीं बल्कि उपयोगी पारंपरिक ज्ञान भी होता है।
1: जी जी,
0: जैसे कि मौसम को समझना, पेड़ पौधों की पहचान करना, पारंपरिक खाद्य पदार्थों का उपयोग, खेती से जुड़ी जानकारी, पशु पक्षियों के व्यवहार को समझना और स्थानीय रीति रिवाजों की जानकारी होना। दोस्तों, इस ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाना हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। साथ ही अंजलि जी, बच्चों में प्रकृति और स्थानीय जीवन के प्रति जिज्ञासा भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देख सकते हैं कि बच्चों को बुजुर्गों से सीख मिलती है, लेकिन यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। बुजुर्गों को भी बच्चों के साथ समय बिताने से खुशी और अपनापन मिलता है।
1: जी हाँ,
0: बच्चे उनके जीवन में उत्साह और ऊर्जा लाते हैं। साथियों, इसलिए परिवार में पीढ़ियों के बीच संवाद दोनों के लिए लाभकारी है।
1: जी,
0: बच्चे अनुभव लेते हैं और बुजुर्ग जो हैं वो अपनी यादों और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं।
1: तो कशिश, इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान पा रहे हैं कि बच्चों को बुजुर्गों से जोड़ना क्यों जरूरी है और उसका क्या महत्व है। इस विषय पर आगे बातें और भी इसी तरह बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन इकोवेरे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करते हैं, बच्चों और बुजुर्गों दोनों को मिलता है अपनापन।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों को बुजुर्गों से सीख मिलती है, लेकिन ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। बुजुर्गों को भी बच्चों के साथ समय बिताने से खुशी अपनापन मिलता है। बच्चे उनके जीवन में उत्साह और ऊर्जा लाते हैं, इसलिए परिवार में पीढ़ियों के बीच संवाद दोनों के लिए लाभकारी है। बच्चे अनुभव लेते हैं और बुजुर्ग अपनी यादों और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, बच्चों को बुजुर्गों से जोड़ने का एक सरल तरीका यह है कि हर दिन कुछ समय परिवार की कहानी का समय बनाया जाए। रात में सोने से पहले दादा दादी या नाना नानी कोई कहानी सुनाए। सप्ताह में एक दिन बच्चे उनसे उनके बचपन के बारे में पूछे, पुराने गीत सुने, पारंपरिक खेल खेले या परिवार की पुरानी तस्वीर देखे।
1: बिल्कुल
0: इससे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने में मदद मिल सकती है और परिवार के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। बच्चों को छोटे छोटे कामों में बुजुर्गों की मदद करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जैसे कि पानी की गिलास देना, सामान लाकर देना, मोबाइल चलाने में मदद करना या कुछ समय उनके पास बैठकर बातचीत करना।
1: बिल्कुल
0: इन छोटी गतिविधियों से कशिश बच्चे सेवा, सहयोग और जिम्मेदारी का अर्थ व्यवहार भी सीखते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। साथी दोस्तों, विद्यालय जो है वो बच्चों को अपने परिवार के बुजुर्गों से जुड़ी कोई कहानी लिखने या रिकॉर्ड करने का कार्य भी दे सकते हैं। बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी से उनके बचपन, पुराने खेल, लोकगीत या गांव के इतिहास के बारे में पूछ सकते हैं अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही इसमें सामुदायिक रेडियो की भूमिका भी अहम होती है। जैसे कि दोस्तों, सामुदायिक रेडियो पर मेरे दादा दादी की कहानी, नानी की सीख या हमारे गांव की पुरानी बात जैसे कुछ कार्यक्रम किए जा सकते हैं। इससे बच्चों को बोलने का अवसर मिलता है और बुजुर्गों का अनुभव भी समाज तक पहुंचता है।
0: जी हाँ बिल्कुल कशिश, सबसे जरूरी बात यह है कि बुजुर्गों को केवल इसलिए बच्चों के करीब न लाया जाए कि वे बच्चों की देखभाल कर सके, उन्हें परिवार के सम्मानित सदस्य के रूप में स्थान दिया जाए। बच्चे भी यह समझे कि बुजुर्ग कोई बोझ नहीं बल्कि परिवार के अनुभव और स्मृतियों की अमूल्य पूंजी है। बच्चों का भविष्य आधुनिक शिक्षा और तकनीक से जरूर बनेगा, लेकिन उनके संस्कार, संवेदनशीलता और जीवन की समझ परिवार के रिश्तों से भी मजबूत होगी।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बच्चों को किताबों और मोबाइल की दुनिया के साथ साथ अपने घर के बुजुर्गों की दुनिया से भी परिचित कराना जरूरी है। वहाँ उन्हें ऐसी कहानियाँ, अनुभव और अपनापन मिलेगा जो किसी स्क्रीन पर नहीं मिल सकता। श्रोता साथियों, बच्चे जब अपने परिवार के बुजुर्गों के करीब रहते हैं तो उनके सामने जीवन को समझने का एक अलग रास्ता खुलता है।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें यह एहसास होता है कशिश कि परिवार केवल साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं बल्कि अनुभव, यादों और रिश्तों की एक ऐसी कड़ी है जिसमें हर पीढ़ी का अपना महत्व है। बुजुर्गों के जीवन की यात्रा बच्चों को यह समझने में मदद करती है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती।
1: बिल्कुल,
0: और कठिन समय में धैर्य, मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ा जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि आज बच्चों के पास जानकारी के अनेक साधन हैं, लेकिन जानकारी और अनुभव में अंतर होता है साथियों। इंटरनेट किसी सवाल का जवाब कुछ ही सेकंड में दे सकता है, लेकिन जीवन की किसी परिस्थिति में सही व्यवहार कैसे करना है, रिश्तों को कैसे निभाना है और मुश्किल समय में मन को कैसे मजबूत रखना है, ऐसी बातें अक्सर अनुभव से ही सीखी जा सकती है।
0: जी जी,
1: परिवार के बुजुर्गों इन अनुभवों को सहज बातचीत और अपने उदाहरणों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही अंजलि जी, पीढ़ियों के बीच संवाद समाज को मजबूत बनाता है।
0: जी हाँ,
1: जब बच्चा अपने घर के बड़े लोगों से सवाल करता है, बुजुर्ग अपने अनुभव बताते हैं, तो परिवार में बातचीत की एक सुंदर परंपरा बनती है।
0: जी हाँ,
1: इससे बच्चे अपने परिवार की पृष्ठभूमि, गाँव की पुरानी यादों और बदलते समय की कहानियों को समझ पाते हैं। साथ ही वे ये भी जान पाते हैं कि उनके परिवार ने किन परिस्थितियों में जीवन बिताया है और आज की सुविधाएं किस तरह धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है।
0: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने जाना कि बच्चों को बुजुर्गों से जोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरीके से ये बच्चों के जीवन को लाभ पहुंचाते हैं। बातें ढेर सारी हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।
2: बच्चे मन के सच्चे,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: भाई ने बोलो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरा ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं, हमारा विषय रहने वाला है हमारे श्रोता साथियों के साथ कि अंगदान कितने लोगों को जीवन दे सकता है।
0: जी हाँ,
1: और अंगदान का क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हमारा विषय रहने वाला है अंगदान, एक निर्णय कई जीवन को बचा सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे श्रोता साथियों कि अंगदान क्या होता है, इसका क्या महत्व है, और साथ ही ये भी बातें होंगी कि हम देखते हैं कि अंगदान करने के पीछे कुछ भ्रम भी लोगों में पैदा होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उन भ्रम से हम दूर कैसे रह सकते हैं और अंगदान करने के क्या फायदे हो सकते हैं, ऐसी ढेर सारी बातें श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे होंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना जागृति जी शुरुआत पहले एक पैर से गीत के साथ ही हम करें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि कशिश गीत से पहले हमारे युवा साथियों को हमने विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं अंगदान को लेकर, कि अंगदान एक निर्णय कई जीवन को बचा सकता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि जीवन ईश्वर का जो है वो सबसे अनमोल उपहार है, लेकिन कई बार गंभीर बीमारियों या दुर्घटनाओं के कारण कशिश कुछ लोगों के अंग काम करना बंद कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में उनके लिए एकमात्र उम्मीद किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया अंगदान होता है। एक व्यक्ति का लिया गया ये निर्णय कई लोगों के जीवन में नई सुबह लेकर आ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: आज जानते हैं कि अंगदान क्या है और इसका महत्व क्या है, इससे जुड़े भ्रम क्या है और युवाओं की इसमें क्या भूमिका हो सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो सबसे पहले बात करते हैं अंगदान होता क्या है।
0: बिल्कुल,
1: तो साथियों अंगदान का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वस्थ अंगों या उत्तकों को किसी ऐसे व्यक्ति को दान करना जिसके शरीर में वह अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहा हो।
0: बिल्कुल,
1: वैसे जागृति जी दान दो प्रकार से हो सकता है। पहला तो ये श्रोता साथियों कि जीवित रूप से अंगदान किया जाए, जिसमें कोई स्वस्थ व्यक्ति अपनी एक किडनी, लीवर का कुछ हिस्सा या फिर अन्य कुछ उत्तक दान कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: और दूसरा दान होता है मृत्यु के बाद अंगदान। इसमें श्रोता साथियों जब किसी व्यक्ति की ब्रेन डेथ हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसकी इच्छा या फिर परिवार की सहमति से उसके अंग जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसे हम मृत्यु के बाद वाला अंगदान कहते हैं जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, बहुत कम लोग जानते हैं कि एक अंगदाता कई लोगों की जान बचा सकता है। एक व्यक्ति के दोनों गुर्दे दो लोगों को जीवन दे सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लीवर दो लोगों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हृदय किसी एक व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। दोनों फेफड़े दो अलग अलग लोगों को बचा सकते हैं। अग्नाशय, आंत और अन्य अंग भी प्रत्यारोपण में उपयोगी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आंखों की कॉर्नियों से दो लोगों की रोशनी मिल सकती है। त्वचा, हड्डियों और उत्तक भी कई मरीजों के उपचार में काम आते हैं। यानी कि श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि एक व्यक्ति अपने जाने के बाद भी कई परिवारों की खुशियां लुटा सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि भारत में हर वर्ष लाखों लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन दोस्तों अंगदान करने वालों की संख्या बहुत कम होने के कारण अनेक मरीज समय पर उपचार नहीं पा पाते। कई मरीज वर्षों तक डायलिसिस पर रहते हैं, कोई नया दिल मिलने पर इंतजार करता है तो कोई लीवर प्रत्यारोपण का। अक्सर श्रोता साथियों केवल अंगों की कमी के कारण कई अनमोल जिंदगियां हमसे दूर चली जाती है। जागृति जी, यदि समाज में जागरूकता बढ़े और अधिक लोग अंगदान का संकल्प लें तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि हमारे वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी है। अगर युवा अंगदान के बारे में सही जानकारी लेते हैं, अपने परिवार और समाज को जागरूक करते हैं तथा इस विषय पर सकारात्मक सोच विकसित करते हैं, तो आने वाले समय में भारत अंगदान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, युवा सोशल मीडिया, कॉलेज, विद्यालय, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: जब कोई व्यक्ति अंगदान करता है कशिश, तब वो किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन देता है। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि किसी माँ का बेटा फिर से मुस्कुराने लगे, किसी पिता को अपनी बेटी की शादी देखने का अवसर मिल जाए, किसी बच्चे को फिर से खेलने का मौका मिल जाए, किसी विद्यार्थी की पढ़ाई दोबारा शुरू हो जाए।
1: जी हाँ,
0: ये सब संभव हो सकता है केवल एक निर्णय से। इसलिए कहा जाता है अंगदान केवल अंगों का दान नहीं बल्कि जीवन, उम्मीद और मुस्कान का दान है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं कि अंगदान एक निर्णय है लेकिन कई जीवन का आधार है श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना एक और गीत के साथ पहले मनोरंजन करें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बातचीत का जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि अंगदान किस प्रकार से एक निर्णय है लेकिन कई जिंदगियां बचा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: गीत से पहले जैसा कि हमने जाना था जागृति जी कि अंगदान केवल चिकित्सा नहीं होती बल्कि मानवता होती है। यहीं अगर बात करें अंगदान से जुड़े कुछ भ्रमों की, तो श्रोता साथियों, हमारे समाज में अब भी कई भ्रांतियां हैं। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि अंगदान से शरीर का सम्मान कम हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें धर्म अनुमति नहीं देता। कुछ लोग तो जागृति जी डरते हैं कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविकता तो ये है साथियों कि अंगदान पूरी तरह वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। हर मरीज को बचाने का हर संभव प्रयास पहले ही किया जाता है। अंगदान केवल निर्धारित कानूनी या चिकित्सीय प्रक्रियाओं के बाद ही होता है। हम देखते हैं कि भारत के लगभग सभी धर्म मानव सेवा और जीवन बचाने को सर्वोच्च मानते हैं। इसलिए भ्रांतियों से नहीं साथियों, सही जानकारी से निर्णय लेना आपके लिए जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि भारत में अंग प्रत्यारोपण एक निर्धारित कानून व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। अंगों की खरीद फरोख्त तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
0: जी जी।
1: हर प्रत्यारोपण प्रक्रिया विशेषज्ञ डॉक्टरों और अधिकृत अस्पतालों की देखरेख में होती है। और श्रोताओं, इसका उद्देश्य केवल जरूरतमंद मरीजों को सुरक्षित और निष्पक्ष रूप से जीवन देना है।
0: जी जी।
1: अगर कोई व्यक्ति अंगदान का संकल्प लेता है तो केवल कार्ड बनवा लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने परिवार के सदस्यों को भी अपनी इच्छा के बारे में बताना होगा, क्योंकि अंतिम समय में परिवार की सहमति बहुत महत्वपूर्ण होती है।
0: बिल्कुल।
1: जब परिवार पहले से इस निर्णय से परिचित होता है तो वो कठिन परिस्थितियों में भी उस इच्छा का सम्मान कर पाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हमारे युवा साथी भी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैसे कि हमारे युवाओं को चाहिए कि अंगदान के बारे में वे पहले सही जानकारी प्राप्त करें, अफवाहों पर विश्वास न करें, अपने मित्रों और परिवारों को जागरूक करें, साथ ही कॉलेज और सामाजिक कार्यक्रमों में इस विषय पर चर्चा करें।
1: जी हाँ।
0: मानव सेवा को साथियों जीवन का हिस्सा बनाएं। यदि श्रोता साथियों सही आयु और परिस्थितियां हो तो अंगदान का संकल्प लेने पर आप विचार कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: और अपने परिवार से इस बारे में आप खुलकर भी बात कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज भी कई लोग केवल जानकारी के अभाव में अंगदान नहीं कर पाते हैं। अगर प्रत्येक गांव, कस्बे, विद्यालय, महाविद्यालय और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए तो हजारों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: सामुदायिक रेडियो, सामाजिक संस्थाएं, स्वास्थ्य विभाग और युवा संगठन मिलकर इस दिशा में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि धन दौलत पद और प्रतिष्ठा जीवन के साथ समाप्त हो जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन अगर हमारे कारण किसी की धड़कन चलती रहे, किसी की आंखों में रोशनी लूट आए या किसी परिवार की उम्मीद फिर से जीवित हो जाए तो यही सबसे बड़ी मानव सेवा है। इसलिए याद रखिए, मृत्यु जीवन का अंत हो सकती है लेकिन अंगदान किसी दूसरे के जीवन की नई शुरुआत बन सकता है। एक छोटा सा निर्णय किसी बच्चे को नया बचपन दे सकता है, किसी माँ को उसका बेटा दे सकता है, किसी पिता को उसकी बेटी और किसी परिवार को फिर से खुशियाँ लौटा सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि जैसा कि आज हम अंगदान को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें हमने जाना कि अंगदान केवल चिकित्सा का विषय नहीं है बल्कि करुणा, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, यह वह निर्णय होता है जो इंसान को मृत्यु के बाद भी अमर बना देता है। हमारे शरीर के अंग एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं जागृति जी, लेकिन वही अंग किसी दूसरे के शरीर में अगर धड़कते रहे, सांस लेते रहे और जीवन को आगे बढ़ाते रहे तो इससे बड़ा पुण्य और मानव सेवा का उदाहरण शायद ही कोई होगा।
1: बिल्कुल।
0: युवा होने के नाते साथियों, हमारी जिम्मेदारी है कि केवल अपने सपनों को हम पूरा न करें बल्कि ऐसा समाज बनाना भी है जहाँ हर व्यक्ति को जीवन जीने का अवसर मिले, सही जानकारी प्राप्त करे, अपने परिवार के साथ इस विषय पर खुलकर चर्चा करे साथियों, और समाज में अंगदान के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में अपनी भूमिका निभाए।
1: बिल्कुल कशिश,
0: याद रखिए अंगदान किसी जीवन का अंत नहीं होता बल्कि कई नए जीवनों की शुरुआत है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, यदि हम अपने जीवन काल में किसी की सहायता नहीं कर पाए तो कम से कम अपने जाने के बाद किसी की सांसों, धड़कन और मुस्कान का कारण जरूर बन सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अंगदान एक ऐसा उपहार है जिसकी कोई कीमत नहीं लेकिन इसका मूल्य अनगिनत जिंदगियों से भी बढ़कर है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी रही।
1: बिल्कुल।
0: और जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले यहाँ पर सुनते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं और अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज जरूरत है केवल अंगदान की बात करने की नहीं बल्कि सही जानकारी प्राप्त करने की, परिवार से संवाद करने की और समाज में जागरूकता फैलाने की। याद रखिए श्रोताओं, जीवन हमें प्रकृति से मिला है लेकिन किसी और को जीवन देने का अवसर हमें मानवता देती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए अंगदान को लेकर डर और भ्रम नहीं बल्कि ज्ञान, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी की सोच अपनाएं, क्योंकि एक निर्णय हमारा हो सकता है लेकिन उससे मिलने वाली जिंदगी किसी और की हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: एक कदम हमारा हो सकता है लेकिन उससे कई परिवारों की खुशियां लूट सकती है और शायद यही इंसान होने की सबसे खूबसूरत पहचान है।
1: बिल्कुल,
0: जीते जी इंसानियत निभाए और अपने जाने के बाद भी किसी की जिंदगी में उम्मीद बन जाए, इसी विचार के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। पर विदा लेने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहेंगे ताकि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी बर्बाद की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात्कालिक में जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज तकी आराज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू, बारते नु खवानो सोड़ो बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो, मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
6: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: भाई ने बोलो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छांव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जैया हवा में आपड़े हाल रह हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा दूंगा पानी ने बचा दूंगा मैं आपड़ी धरती ने जीवन दान लूंगा।
6: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
4: होवे आज नाना कदम है ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं पढ़ने की आदत जीवन बदलने वाली शक्ति को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, कल्पना कीजिए कि हमारे हाथ में ऐसी कोई चाबी हो जो ज्ञान के अनगिनत दरवाजे खोल सके, हमें नई दुनिया से परिचित करा सके, हमारी सोच को बदल सके और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सके। ये चाबी कोई महंगी वस्तु नहीं बल्कि एक बहुत ही सरल आदत है, वो है पढ़ने की आदत।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे पढ़ने की आदत को लेकर।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, किताबें केवल कागज पर लिखे हुए शब्दों का संग्रह नहीं होती है, वे अनुभवों, विचारों, भावनाओं, संघर्षों और ज्ञान का संसार होती है। श्रोता साथी, एक अच्छी किताब हमें उन लोगों से मिलवाती है जिनसे हम शायद कभी वास्तविक जीवन में नहीं मिल सके। वह हमें उन स्थानों की यात्रा करा सकती हैं जहां हम कभी गए नहीं, और उन परिस्थितियों को समझने का अवसर देती हैं जिनका हमें स्वयं अनुभव नहीं किया। श्रोता साथियों, आज का समय डिजिटल तकनीक का समय है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जानकारी और ज्ञान में अंतर है।
0: जी हाँ।
1: जानकारी हमें, जागृति जी, बहुत कुछ बताती है, जबकि गहराई से पढ़ना हमें समझना सिखाता है। इसलिए आज के तेज जीवन में पढ़ने की आदत पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
0: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि मनुष्य के विकास में पुस्तकों की भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। श्रोताओं, हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव खोजे, विचारों को शब्दों में सुरक्षित किया और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाया। आज हम इतिहास, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, समाज और महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में कुछ जो कुछ जानते हैं वो सब पुस्तकों का ही बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल।
0: पढ़ने की सबसे बड़ी विशेषता ये है श्रोताओं कि इसके माध्यम से हम अपने जीवन के सीमित अनुभव से बाहर निकलकर दुनिया के व्यापक अनुभव से जुड़ सकते हैं। अंजलि, एक विद्यार्थी विज्ञान की पुस्तक पढ़कर ब्रह्मांड को समझ सकता है, इतिहास पढ़कर अतीत से सीख सकता है और किसी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़कर संघर्ष और सफलता की कहानी को जान सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किताबें हमारे ज्ञान की सीमा को लगातार बढ़ाती रहती हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, पढ़ने की आदत केवल जानकारी नहीं देती है बल्कि हमारी सोच की क्षमता को भी विकसित करती है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल पैदा होता है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या होगा, क्या इसके बारे में कोई दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है। ये प्रक्रिया हमारी तार्किक सोच को मजबूत करती है जागृति जी।
0: हाँ।
1: नियमित पढ़ने वाला व्यक्ति किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करता कि किसी ने उससे कह दिया, वह उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करता है। विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए यह आदत बहुत उपयोगी है। पढ़ना उन्हें अपने विचार बनाने, सही प्रश्न पूछने और किसी विषय को गहराई से समझने में सहायता करता है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि पढ़ने की जो आदत होती है वो हमारे अंदर आत्मविश्वास को ही बढ़ाती है। आत्मविश्वास केवल बोलने से नहीं आता श्रोता साथियों, बल्कि ज्ञान और समझ से भी आता है। जब किसी व्यक्ति को किसी विषय की अच्छी जानकारी होती है तो वो अपनी बात और अधिक स्पष्टता से रख देता है। मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी विद्यार्थी ने किसी विषय पर अच्छी पुस्तक पढ़ी है, जब उस विषय पर चर्चा होगी तो उसके पास अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त जानकारी होगी, इससे उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। अंजलि, पढ़ने से भाषा और अभिव्यक्ति भी बेहतर होती है। जितने अधिक शब्द हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उतनी ही बेहतर तरीके से हम अपने विचार को व्यक्त कर पाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, भाषा हमारे विचारों को दूसरों तक पहुँचाने का माध्यम है। पढ़ने की आदत भाषा को मजबूत बनाने का एक प्रभावी तरीका भी है। इसलिए श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि जब हम अलग अलग प्रकार की किताबें, कहानियाँ, लेख, समाचार और साहित्य पढ़ते हैं तो हमें नए शब्द मिलते हैं। धीरे धीरे हमारा शब्द भंडार बढ़ाता है और हम अपनी बात अधिक प्रभावी तरीके से कह पाते हैं। विद्यार्थियों के लिए इसका विशेष महत्व है जागृति जी। नियमित पढ़ने से उन्हें लिखने, बोलने, समझने और प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता मिलती है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि पढ़ने की आदत हमारे अंदर किस तरह से होनी चाहिए और ये हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है।
1: जी हाँ।
0: ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने जाना कि पढ़ने से भाषा और शब्द भंडार समृद्ध होते हैं, यही बात करें तो किताबें अच्छे विचारों से जुड़ती है। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी किताब हमारे जीवन में एक अच्छे मित्र की तरह होती है। वह हमें सही और सकारात्मक सोच की ओर ले जा सकती है, क्योंकि महान व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ने से हमें पता चलता है कि सफलता हमेशा आसान रास्तों से नहीं मिलती। महान वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों, साहित्यकारों और राष्ट्र निर्माताओं के जीवन में भी संघर्ष और असफलताएं आई, लेकिन उन्होंने जागृति जी प्रयास जारी रखा। ऐसी कहानियां हमें यह समझाती है कि कठिनाइयां जीवन का अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर हो सकती हैं। जब हम अच्छे विचार पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचारों और व्यवहार में भी उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये भी जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं इसका चयन सोच समझ कर करें।
1: बिल्कुल अंजलि, इसका चयन हमें सोच समझ कर ही करना चाहिए कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम पढ़ क्या रहे होते हैं और हम सोच क्या रहे होते हैं, ये दोनों ही चीजें अलग अलग हो जाती है। तो श्रोता साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि कहानी और साहित्य पढ़ते समय हम शब्दों के माध्यम से अपने मन में दृश्य बनाते हैं और यही हमारी कल्पना शक्ति को विकसित करता है।
0: बिल्कुल,
1: एक कहानी हमें किसी गांव, जंगल, पहाड़ या ऐतिहासिक समय की कल्पना करा सकती है। अंजलि, हम पात्रों की परिस्थितियों को समझ सकते हैं और उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ भी सकते हैं। कल्पना शक्ति केवल साहित्य के लिए जरूरी नहीं है श्रोताओं, विज्ञान, कला, तकनीक और नए विचारों के विकास में भी कल्पना शक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए पढ़ना हमारे रचनात्मक सोच को भी मजबूत करता है।
0: जी हाँ जागृति जी, आज मोबाइल फोन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मोबाइल के माध्यम से शिक्षा, जानकारी और मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं। लेकिन श्रोता साथियों, लगातार बिना उद्देश्य स्क्रीन पर समय बिताना हमारी दिनचर्या को असंतुलित कर सकता है। ऐसे में पढ़ना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि हम अपने दिन में कुछ समय केवल पढ़ने के लिए निर्धारित कर लें तो धीरे धीरे यह एक सकारात्मक आदत बन सकती है।
1: जी हाँ,
0: इसका अर्थ यह नहीं है कि तकनीक से पूरी तरह दूरी बना ली जाए। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने समय का संतुलित उपयोग करें। मोबाइल से जानकारी लेने के साथ साथ किताबों से गहराई से सीखने की आदत भी विकसित करें।
1: बिल्कुल अंजलि, कई लोग सोचते हैं कि किताब पढ़ने के लिए रोज घंटों का समय चाहिए। वास्तव में ऐसा जरूरी नहीं है श्रोता साथियों, शुरुआत केवल 15 या 20 मिनट से की जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह का शांत समय, दोपहर का खाली समय या रात को सोने से पहले हम कुछ समय पढ़ने के लिए रख सकते हैं। शुरुआत में छोटी और रुचिकर किताब चुनना बेहतर होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें उस समय रुचि नहीं होती तो हम बराबर उन किताबों को पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हम शुरुआत में कोई हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे मन के अनुसार हम किताब चुन सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज कुछ पन्ने भी पढ़ता है तो कुछ महीनों में वो कई पुस्तकें पढ़ सकता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है दोस्तों कि हम एक दिन में कितना पढ़ते हैं, बल्कि ये है कि हम नियमित रूप से पढ़ते हैं या नहीं। छोटी शुरुआत, नियमित प्रयास और निरंतरता, यही पढ़ने की आदत को मजबूत बनाती है।
0: जी हाँ बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि शिक्षा केवल विद्यालय, कॉलेज या किसी परीक्षा तक सीमित नहीं है। जीवन स्वयं एक विद्यालय है और हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है।
1: जी हाँ,
0: पढ़ने वाला व्यक्ति उम्र के किसी भी पड़ाव पर सीखना जारी रख सकता है। वह नई तकनीक के बारे में पढ़ सकता है, नई भाषा सीख सकता है और इसी के साथ कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इतिहास और किसी अन्य विषय को भी समझ सकता है। इसलिए पढ़ने की आदत हमें जीवन भर सीखने वाला व्यक्ति बनाती है। यह आदत जागृति जी हमें बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। आज हम देखते हैं कि कभी कभी किसी पुस्तक का एक विचार भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: कोई कहानी हमें मेहनत करना सिखा सकती है, कोई जीवन हमें संघर्ष से प्रेरणा दे सकती है और कोई विचार हमें अपनी गलतियों पर सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं श्रोता साथियों, जहां पुस्तकों और विचारों ने लोगों के जीवन की दिशा बदली। इसलिए किसी पुस्तक को केवल पढ़कर बंद कर देना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरी है कि हम उसमें मिले अच्छे विचारों पर विचार करें और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए हमें कुछ सरल कदम अपनाने होंगे, जैसे कि अपनी रुचि के विषय से शुरुआत करनी होगी। अगर कहानी पसंद है तो कहानी पढ़े, विज्ञान पसंद है तो विज्ञान पढ़े, तो विज्ञान की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। रोज पढ़ने का निश्चित समय तय करें, शुरुआत 15 मिनट से भी की जा सकती है। पढ़ते समय महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करें या अपनी नोटबुक में जरूर लिखें।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ी हुई चीजों पर परिवार या मित्रों के साथ चर्चा करें, इससे समझ और मजबूत होती है। एक साथ बहुत सारी किताबें शुरू करने के बजाय पहले किताब पूरी करने की आदत जरूर डालें।
0: जी हाँ।
1: पुस्तकालय का उपयोग करें। पुस्तकालय हमें कई विषयों की अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराता है, साथ ही ऐसी सामग्री पढ़े जो हमारे ज्ञान, सोच और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में सहायता करता है।
0: जी हाँ।
1: बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने में परिवार और विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंजलि, अगर घर में माता पिता स्वयं किताबें पढ़ते हैं तो बच्चे को भी पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हम देखते हैं कि विद्यालयों में पुस्तकालय को केवल किताबों का कमरा नहीं बल्कि सीखने और विचार करने का केंद्र बनाया जाता है।
0: जी जी।
1: बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के अलावा कहानी, विज्ञान, इतिहास, जीवनियां और बाल साहित्य पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। और अगर बच्चों को बचपन से ही किताबों से मित्रता करना सिखाया जाए तो पढ़ना उनके लिए बोझ नहीं बल्कि आनंद बन सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, पढ़ने की आदत एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, लंबे समय तक बना रहता है। यह हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, सोच को गहराई देती है, भाषा को मजबूत करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। हमें जीवन भर सीखते रहने के लिए भी प्रेरित करती है। आज हमारा ध्यान कई दिशाओं में बटा हुआ है।
1: जी हाँ।
0: तब किताबों के साथ जागृति जी कुछ समय बिताना स्वयं को समय देने जैसा है। जरूरी नहीं है कि हम हर दिन कोई बड़ी पुस्तक पढ़े। जरूरत केवल इस बात की है कि हम सीखने और पढ़ने की यात्रा को लगातार जारी रखें।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, हर दिन कुछ समय पढ़ने की आदत हमें डालनी है, कुछ नया सीखना है और सीखी हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि किताब का एक पन्ना शायद हमारे जीवन को तुरंत न बदले लेकिन रोज पढ़ा गया एक पन्ना धीरे धीरे हमारी सोच बदल सकता है। और जब सोच बदलती है तो दृष्टिकोण बदलता है, निर्णय बदलते हैं और अंततः जीवन की दिशा भी बदल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथियों, पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि पढ़ने की आदत केवल ज्ञान पाने का माध्यम नहीं बल्कि बेहतर जीवन की ओर पढ़ने वाली शक्ति है। कहा गया है कि हर दिन एक पन्ना ज्ञान का, हर दिन एक कदम विकास का। पढ़ने की आदत अपना लीजिए श्रोताओं, यही रास्ता है उज्जवल भविष्य का।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे जागृति जी कि आज कार्यक्रम में पढ़ने की आदत, जीवन बदलने की शक्ति को लेकर जो हमारी बातचीत रही है वो हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वाक रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए श्रोता साथियों, 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, उसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vakdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को। नमस्कार।

0: साथियों, स्वस्थ युवा मजबूत समाज, अच्छी आदतें बने विकास, तन हो स्वस्थ मन हो खुशहाल, युवा बनाए देश को कमाल।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ में आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारशर।
1: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।
0: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर एक नए विषय के साथ में। आज हम बात करेंगे मनीषा, हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति की। जी हाँ श्रोता साथियों, युवा अवस्था जीवन का वह समय है जब व्यक्ति अपने सपनों को दिशा देता है, अपने भविष्य की नींव रखता है और अपने परिवार, समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन मनीषा, एक मजबूत भविष्य केवल अच्छी पढ़ाई या नौकरी से नहीं बनता, उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य, सही सोच और अच्छी जीवन शैली भी उतनी ही जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: आज के समय में युवाओं के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। पढ़ाई और नौकरी का तनाव, मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक इस्तेमाल, देर रात तक जागना, शारीरिक गतिविधियों की कमी, असंतुलित खान पान और नशे जैसी आदतें धीरे धीरे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आज का सवाल है कि क्या हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें भविष्य को मजबूत बना सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। जानेंगे इस विषय पर ढेर सारी बातों को, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मनोरंजन करवाना चाहेंगे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं युवा स्वास्थ्य और अच्छी आदतें और मजबूत भविष्य को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। युवाओं में ऊर्जा होती है, नई सोच होती है और कुछ नया करने का उत्साह होता है। यही युवा आगे चलकर अंजलि जी हम देखते हैं कि देश, समाज और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथी, युवाओं का स्वस्थ रहना केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि श्रोता साथियों हमने आपको गीत से पहले बताया था कि आज का युवा पढ़ाई, नौकरी, प्रतियोगिता, परीक्षाओं, करियर और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन इसी भागदौड़ भरी जिंदगी में श्रोता साथियों कई बार स्वास्थ्य पीछे छूट जाता है। जैसा कि देर रात तक जागना, सुबह समय पर न उठ पाना, पौष्टिक भोजन की जगह फास्ट फूड खाना, मोबाइल घंटों तक चलाना, शारीरिक गतिविधियों का कम होना और साथ ही अंजलि जी हम देखते हैं कि तनाव है उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य वो धीरे धीरे बिगड़ता जाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती है। कई बार छोटी छोटी अच्छी आदतें ही जीवन में बड़ा बदलाव लाती है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह समय पर उठना, पर्याप्त नींद लेना, रोज थोड़ा पैदल चलना या व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, व्यक्तिगत स्वच्छता रखना और तनाव को सही तरीके से संभालना, ये सभी आदतें युवा जीवन को स्वस्थ बना सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: युवाओं को यह समझना होगा कि स्वास्थ्य केवल बीमारी न होने का नाम नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति वह है जो शारीरिक रूप से सक्रिय हो, मानसिक रूप से संतुलित हो और सामाजिक रूप से जिम्मेदार जीवन जी सके। आजकल युवा स्वाद और सुविधा के कारण पैकेट वाले खाद्य पदार्थ बहुत अधिक खाते हैं, तला भुना भोजन, मीठे पेय और फास्ट फूड का अधिक सेवन करने लगे हैं।
0: जी हाँ,
1: कभी कभार मनीषा ऐसा भोजन करना अलग बात है, लेकिन यदि यही रोज की आदत बन जाए तो शरीर पर इसका असर पड़ सकता है।
0: जी हाँ,
1: हमारे आसपास उपलब्ध स्थानीय भोजन, पारंपरिक खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, मोटे अनाज, रागी, मक्का, बाजरा, ज्वार, दूध और उपलब्ध स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ भोजन को संतुलित बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर युवा यह संकल्प ले सकते हैं कि वे भोजन को केवल स्वाद के आधार पर नहीं बल्कि पोषण और शरीर की जरूरत के आधार पर भी चुनेंगे।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत एक व्यवस्थित दिनचर्या से होती है। युवाओं को अपने दिन का एक सरल कार्यक्रम बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि समय पर सोना, समय पर उठना, भोजन का सही समय रखना, पढ़ाई और काम के बीच आराम करना और साथ ही श्रोता साथियों शारीरिक गतिविधियों के लिए समय निकालना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: दिनचर्या बहुत कठिन या सख्त रखने की जरूरत नहीं है साथियों, बस इतना जरूरी है कि जीवन में नियमितता हो। जब हम रोज एक निश्चित समय पर अपना काम पूरा करते हैं तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारा शरीर और मन दोनों बेहतर तरीके से काम करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सुबह उठने के बाद कुछ समय अपने लिए निकालना भी जरूरी है। पानी पिए श्रोता साथियों, हल्की शारीरिक गतिविधियां करें और साथ ही हमारे दिन की योजना है उसको हमें अच्छी तरह से बनाना है और हमें दिन की शुरुआत अच्छी करनी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आज मोबाइल और स्क्रीन के बढ़ते इस्तेमाल के कारण कई युवाओं की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं।
0: जी हाँ,
1: लंबे समय तक एक ही जगह बैठना शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। हर युवा अपनी क्षमता और दिनचर्या के अनुसार रोज कुछ समय शारीरिक गतिविधियों के लिए निकाल सकता है।
0: जी बिल्कुल,
1: पैदल चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, योग, खेलकूद या घर के काम में सक्रिय रहना। श्रोता साथियों, ये सभी शरीर को सक्रिय रखने के तरीके हैं। व्यायाम का मतलब हमेशा मनीषा जिम जाना नहीं होता है, जरूरी यह है कि शरीर सक्रिय रहे। आज हम देखते हैं कि युवाओं में देर रात तक मोबाइल चलाना और पढ़ाई काम के कारण पर्याप्त नींद न लेने की आम समस्या बनती जा रही है, लेकिन नींद शरीर और मस्तिष्क को आराम देने का महत्वपूर्ण समय है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो शरीर को आराम मिलता है और अगले दिन काम करने की क्षमता बेहतर रहती है।
0: जी बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों, युवा देर रात तक बिना जरूरत जागने की आदत से बचें और अपनी दिनचर्या में पर्याप्त नींद के लिए समय रखें। मोबाइल को सोने का साथी नहीं, जरूरत के समय इस्तेमाल होने वाला साधन बनाए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बातें चल रही हैं कि युवा साथी है वो अपने जीवन में स्वस्थ आदतें कैसे अपनाकर अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं।
1: जी जी,
0: तो ये श्रोता साथियों से हमारी बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कि मोबाइल आज हमारी जरूरत बन चुका है। पढ़ाई, नौकरी, जानकारी और संवाद के लिए इसका उपयोग बहुत लाभदायक है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन श्रोता साथियों, समस्या तब होती है जब मोबाइल हमारे समय और दिनचर्या को नियंत्रित करने लगे। लगातार सोशल मीडिया देखना, दूसरों से अपनी तुलना करना और घंटों वीडियो देखते रहना समय की बर्बादी के साथ साथ मन पर भी दबाव डाल सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए युवा खुद से एक सवाल पूछें कि मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ या मोबाइल मेरा इस्तेमाल कर रहा है।
1: जी हाँ।
0: मोबाइल का उपयोग करें लेकिन अपनी नींद, पढ़ाई, काम, परिवार, दोस्ती और स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। श्रोता साथियों, स्वास्थ्य की बात करते समय हम अक्सर शरीर की बात करते हैं, लेकिन मन का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शरीर का स्वास्थ्य। पढ़ाई, रोजगार, परिवार, रिश्तों और भविष्य को लेकर युवाओं के मन में तनाव और चिंता हो सकती है। ऐसे समय में अपनी परेशानी को अंदर दबाकर रखना जरूरी नहीं है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करना, प्रकृति के बीच समय बिताना, पसंद की रचनात्मक गतिविधि करना और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए मनीषा, जहाँ युवा अपनी परेशानियां बताने में शर्म महसूस न करे। मदद मांगना कमजोरी नहीं है बल्कि अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यही अगर श्रोता साथियों को बताएं कि नशे से दूरी हम कैसे बनाएं, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि युवाओं के स्वास्थ्य के लिए नशे से दूरी बनाना बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: तंबाकू, शराब, अन्य नशीले पदार्थ हैं वो शरीर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक होते हैं। कई बार अंजलि जी हम देखते हैं कि दोस्तों के दबाव में आकर और जिज्ञासा के कारण भी हमारे युवा साथी ही वो नशे की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। लेकिन श्रोता साथियों, किसी गलत आदत की शुरुआत बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। युवाओं को यह समझना चाहिए कि किसी को देखकर या दोस्तों के दबाव में आकर ऐसा व्यवहार करना हमारे लिए जरूरी नहीं है।
0: जी जी।
1: जरूरत पड़ने पर स्पष्ट रूप से नहीं कहना भी हमारे लिए आत्मविश्वास का एक हिस्सा बन सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ भविष्य के लिए नशे से दूरी ही एक मजबूत निर्णय है।
0: बिल्कुल मनीषा, इसलिए जरूरी है कि युवा एक बार करके देखते हैं वाली सोच से सावधान रहे।
1: जी हाँ।
0: सच्ची दोस्ती वह है जो हमें गलत रास्ते पर न ले जाकर सही दिशा दिखाती है। अगर किसी युवा को नशे की आदत से बाहर आने में परेशानी हो रही है तो उसे अकेला छोड़ने के बजाय परिवार और योग्य स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: व्यक्तिगत स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य आदतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नियमित स्नान, साफ कपड़े पहनना, हाथों की सफाई, दांतों की देखभाल, साफ पानी का उपयोग और आसपास की सफाई रखना बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। युवा केवल खुद स्वच्छ रहें इतना ही पर्याप्त नहीं है, वे अपने परिवार और गांव में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने में भूमिका निभा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: युवा की अच्छी आदत पूरे परिवार और समाज के लिए उदाहरण बन सकती है। श्रोता साथियों, युवा केवल अपने भविष्य के निर्माता नहीं बल्कि समाज के वर्तमान को भी दिशा देने वाली शक्ति है। यदि गांव का युवा स्वस्थ है, जागरूक है, नशे से दूर है, शिक्षा और कौशल के प्रति गंभीर है और अपने स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदार है तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। एक युवा अपने घर में छोटे बच्चों को खेल कूद के लिए प्रेरित कर सकता है, परिवार को पौष्टिक भोजन के महत्व के बारे में बता सकता है, बुजुर्गों की मदद कर सकता है और गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों में भाग ले सकता है। इसलिए स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं छोटा साथियों बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगी कि युवा और स्वास्थ्य का संबंध है वो बहुत गहरा है। युवा अवस्था में अपनाई गई श्रोता साथियों आदतें जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए हर युवा को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधियां, व्यक्तिगत स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान, मोबाइल का संतुलित उपयोग और नशे से दूरी जैसी अच्छी आदतें ही उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। श्रोता साथियों, हमें ये याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बीमारी आने के बाद ही याद किया जाए। स्वास्थ्य की देखभाल आज से बल्कि अभी से शुरू की जा सकती है। अंत में श्रोता साथियों आपसे यही कहना चाहेंगी कि आज की अच्छी आदत कल की मजबूत नींव है। स्वस्थ युवा मजबूत समाज की पहचान है और श्रोता साथियों स्वस्थ युवा ही मजबूत भविष्य के निर्माण में अपना अच्छा योगदान दे सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, अच्छी आदत अपनाएंगे स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। आज स्वस्थ युवा बनेंगे तो कल मजबूत भारत गढ़ेंगे।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है युवा और स्वास्थ्य, अच्छी आदतें और मजबूत भविष्य को लेकर, वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

करते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसोरा ने मुस्कान। होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, जहां हम बात करते हैं दोस्तों उन ख्वाबों की जो आंखों से निकलकर हकीकत बनना चाहते हैं और उन हौसलों की भी जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से आज एक नए विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। साथियों, आज का हमारा विषय है खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है। तो बातें ढेर सारी होंगी इस विषय को लेकर, जानेंगे कि खुद पर विश्वास का क्या मतलब है और ऐसा होना क्यों जरूरी है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,

तो क्यों ना दोस्तों पहले मनोरंजन इस गीत के साथ हम करें। तो आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कि खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने ही कदमों पर शक करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे जितने अच्छे नहीं हैं। लेकिन साथियों, सच क्या है? सच तो ये है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा खुद पर विश्वास ही है। खुद पर विश्वास का मतलब है दोस्तों, अपने फैसलों पर भरोसा रखना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और गिरकर भी दोबारा उठने की हिम्मत रखना। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वो मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी पार कर पाता है। अगर इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, तो दोस्तों एक बार की बात है कि एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था आरव। उसे गाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं थी। जब भी वो गाता, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और उसने गाना छोड़ दिया। लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा आरव, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। यह सुनकर आरव को थोड़ा अच्छा लगा। उसने फिर से कोशिश की, हर दिन प्रैक्टिस की, गलतियां भी की और उन गलतियों से सीखा भी और आगे बढ़ता गया साथियों। और एक दिन क्या हुआ, आरव यानी कि वही लड़का जो स्टेज पर खड़ा था और लोग उसकी आवाज की तारीफ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि आरव की थी। जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में ही जाना कि जब लोग आरव का मजाक उड़ाते थे तो उसकी वजह से आरव का आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा गया था। लेकिन उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसकी माँ उसका सहारा बनी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यहाँ पर आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ की बात की गहराई को समझा और फिर से कोशिश करना शुरू किया साथियों। और अंत में आरव सफल हो ही गया। क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि खुद पर विश्वास करना एक, कह सकते हैं कि एक अदृश्य ताकत होती है जिसे हम सभी देख नहीं पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि खुद पर विश्वास करना इतना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप दूसरों की बातों से जल्दी नहीं टूटते। आपके फैसले बेहतर होते हैं, यानी कि आपको किसी भी निर्णय लेने में कंफ्यूजन कम होता है और आप स्पष्ट तरीके से सोच पाते हैं साथियों। आप डर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि डर तो हमेशा रहेगा, लेकिन विश्वास आपको उससे लड़ना सिखाएगा साथियों। और हम जैसा कि जानते हैं कि बिना विश्वास की कोई भी सपना कभी पूरा नहीं होता, बल्कि अधूरा रह जाता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे, हम फैसले भी अच्छी तरीके से ले पाएंगे और हमारी सोचने की क्षमता भी दोस्तों स्पष्ट होगी, जिससे हम कभी असफल नहीं होंगे और जो लक्ष्य हमने तय किया है उस पर हम बेहतर तरीके से काम भी कर पाएंगे और सफलता के मुकाम पर जरूर पहुँचेंगे साथियों। तो जैसा कि बातें मैं आपसे कार्यक्रम के माध्यम से करी रही हूँ और विषय हमारा चल रहा है बातचीत का कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है और ऐसा हम कर भी कैसे सकते हैं, तो ये बातें आगे भी होंगी। लेकिन अभी मैं आपको सुनवाना चाहूंगी यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में विषय हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, और जैसा कि हम गीत से पहले जान पाए थे कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, अब यही अगर दोस्तों आपको बताएं तो जब हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, खुद पर विश्वास की कमी हर काम को बिगाड़ सकती है। आप हर काम में डर महसूस करेंगे, दूसरों से तुलना आप अपनी करते रहेंगे, और मौके आपके सामने आएंगे लेकिन आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप अपने ही सपनों से दूर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होता है। अब यही सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है तो आपको हर दिन कुछ अच्छा करना चाहिए। जैसे कि आप खुद की तारीफ कर सकते हैं, आप खुद को नई नई चीजों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि जो लोग

को नीचे गिराते हैं उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, गलती करना गलत नहीं है लेकिन उन्हें दोहराना गलत है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपनी गलतियों से सीख लेनी है, ना कि उन गलतियों को दोहराना है। साथ ही दोस्तों, खुद से आप पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जब हमारे अंदर नकारात्मकता रखते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे कई काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आप खुद से ये कह सकते हैं कि मैं हर काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मैं बेहतर बन रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, ऐसे पॉजिटिव बातें खुद से करने से होगा ये कि आपके अंदर सकारात्मक चीजें आएंगी और सकारात्मक होने से आपके सारे काम दोस्तों अच्छे से हो पाएंगे। साथ ही अपने लक्ष्य को भी स्पष्ट रूप से तैयार करें, क्योंकि जब लक्ष्य साफ होगा तो विश्वास अपने आप ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप आज ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो एक बार रुकिए और खुद से ये पूछिए कि क्या आपने कोशिश की, क्या आपने खुद पर भरोसा किया। अगर जवाब नहीं आता है दोस्तों, तो आज से ही आपको शुरुआत करनी है खुद पर विश्वास करने की। क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, प्रयास करना न छोड़ें, क्योंकि जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं तो हम चाहकर भी उस काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि दुनिया में हर सफल इंसान की कहानी एक जैसी होती है। उन्होंने खुद पर विश्वास किया, जब कोई और उनके साथ नहीं था तब भी उन्होंने खुद पर विश्वास रखा। जब रास्ते मुश्किल थे, जब हालात उनके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कभी हार नहीं मानी और आज वही लोग हमारी प्रेरणा बन चुके हैं। साथियों, हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई अच्छी आदत छिपी हुई होती है और उसी अच्छी आदत को हमें पहचानना है। क्योंकि दोस्तों, सफल तो हम सभी होना चाहते हैं, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में सफल होना चाहता है, लेकिन बस कमी ये रह जाती है कि हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज से ही खुद पर विश्वास करें, खुद से ये कहें कि जो काम दूसरे कर सकते हैं वो काम मैं भी कर सकता हूँ, जिस काम में मैं असफल हुआ हूँ उसमें सफलता प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है। अगर ऐसी सकारात्मक बातें आप खुद से करेंगे दोस्तों, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमने जाना कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, तो ऐसे में याद रखें दोस्तों कि आपका सबसे बड़ा दोस्त आप खुद हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। इसलिए अपने सपनों को पंख दीजिए और एक लंबी उड़ान भरिए श्रोताओं, क्योंकि आसमान उन्हीं का होता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ, अब जैसा कि बातें मेरी आपसे कार्यक्रम में ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान। अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी की इस दौड़ में सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है दोस्तों, तो वो है आपका खुद पर विश्वास। हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, रास्ते कितने भी उलझे हुए क्यों न हो दोस्तों, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कभी भी खुद को कम मत आंकिए, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है साथियों, जो आपको आपकी हर मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो आज से ही एक वादा कीजिए खुद से, अपने सपनों से और अपनी मेहनत से कि चाहे जो भी हो जाए, आप खुद पर विश्वास कभी नहीं खोएंगे। क्योंकि दोस्तों, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और हौसलों की शुरुआत होती है खुद पर विश्वास से। इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नई उड़ान भरे विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ दोस्तों, नमस्कार।

अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भयन बोनू आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित जागृति बुन। आपने कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बुन हूँ था का? अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो, मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: तो कशिश आज हमारी कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है इंटरनेट के फायदे और नुकसान को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट ने हमारे जीवन को बदल तो दिया है लेकिन उसी के साथ जो ढेर सारी समस्याएं हैं वो भी हमें देखने को मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि इंटरनेट ने जिस तरीके से हमें जितनी सुविधाएं दी हैं हम उन सुविधाओं का सीमित प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम उस सुविधाओं को हद से ज्यादा प्रयोग में ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिलते हैं।
0: जी हाँ,
1: तो आज कार्यक्रम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, इंटरनेट के क्या फायदे हैं और किस तरीके से इंटरनेट के अत्यधिक प्रयोग से हमें कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन क्यों ना कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हमारे श्रोता साथियों को हम सुनवा दें।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि साथियों, हमने गीत से पहले आपको विषय से रूबरू करा दिया था, आज हमारी बातचीत रहने वाली है इंटरनेट के फायदे और नुकसान को लेकर।
1: जी हाँ श्रोता, हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट ने हमारे जीवन के मायने पूरी तरह से बदल दिए हैं। इसने हमारे जीवन के स्तर को अंजलि जी ऊंचा कर दिया है और कई कार्यों को बहुत सरल और आसान भी बना दिया है।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, हालांकि इसने कई नुकसानों को भी जन्म दिया है, जैसे हर चीज के साथ होता है इंटरनेट का अधिक उपयोग हानिकारक भी होता है। दोस्तों, इंटरनेट के साथ कई नुकसान जुड़े हुए हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: इनमें से कुछ समय का व्यर्थ होना, धोखाधड़ी, स्पैमिंग, हैकिंग, ये सभी शामिल समस्याएं हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति इसलिए देते हैं ताकि वे अपनी परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कई छात्र जो हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं। इंटरनेट सूचना का एक विशाल स्रोत माना जाता है दोस्तों, और इस तरीके से यह छात्रों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी विषय या पाठ से संबंधित सारी जानकारी उन्हें इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो पाती है।
1: बिल्कुल,
0: और वाकई में कशिश, ये जो चीज है वो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन बहुत से जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करने के बहाने अपने पेरेंट्स से फोन ले लेते हैं, और फिर अपने रूम में जाकर हम देखते हैं कि वो अलग अलग प्रकार के गंभीर गेम खेलना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका जो ध्यान है वो भटक जाता है। और वहीं जो माता पिता हैं वो तो ये सोचते हैं कि चलो हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनके काम में लग जाने के बाद उनके जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार के जो गेम है वो खेलना शुरू कर देते हैं, और उन्हें गेमिंग की लत इतनी खतरनाक लग जाती है कि हम देखते हैं कि वो उससे दूरी नहीं रह पाते हैं। अगर उन्हें एक दिन फोन ना मिले तो उनका खाना पीना सब कुछ छूट जाता है, उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमें सुविधाएं मिली हैं तो उन सुविधाओं का हम सीमित प्रयोग करें ताकि हमारे जीवन में हमें कभी भी कोई साइड इफेक्ट उससे देखने को ना मिले।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेट से हमारे जीवन पर काफी नुकसान होते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि शारीरिक और मानसिक नुकसान भी हमें होता है।
0: जी हाँ,
1: यानी कि इंटरनेट के मुख्य नुकसान में से एक यह भी है श्रोताओं कि यह विशेष रूप से छात्रों का ध्यान भटकाता है। कई छात्र इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वीडियो देखते हैं अंजलि जी, या फिर कहे मनोरंजक उद्देश्य के लिए ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जैसा कि आपने बताया।
0: जी हाँ,
1: वे जल्द ही इसके आदि भी हो जाते हैं, और वे अपना समय इंटरनेट पर कुछ देखने, खेलने या फिर कहे सर्च करने में लगे रहते हैं।
0: जी
1: दोस्तों,
0: हाँ।
1: यह समय की बहुत बड़ी बर्बादी होती है।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों की और युवाओं की उम्र वह होती है जिसमें उन्हें अपना भविष्य बनाना होता है।
1: बिल्कुल,
0: वहीं अगर वो ऐसी चीजों में, ऐसी लतों में पड़ गए तो हम देखते हैं कि उनका जो भविष्य है वो खराब हो जाता है। हम देखते हैं कि आजकल बच्चों को मोबाइल फोन का इतना एडिक्शन हो गया है कि वो उसके बिना तो कुछ करते ही नहीं है। हम देखते हैं कि माता पिता भी इसके लिए कहीं हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि बचपन से ही अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है या कुछ नहीं कर रहा है तो माता पिता उसे खुद बातों में न लगाते हुए उसे फोन पकड़ा देते हैं, उसकी पसंद की वीडियो उसे दिखाने लग जाते हैं, जिससे बच्चा जो है उसको रंग बिरंगी चीजों को देखते देखते खाना अच्छे से खा लेता है। तो माता पिता को ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हम इसे ये देखने को दे देते हैं, हमारा बच्चा खाना तो कम से कम सही खा लेगा। लेकिन उसके विपरीत परिणाम ये हमें देखने को मिलता है कि जो बच्चा है वो उसमें इतना गुम हो जाता है कि थोड़े दिनों बाद उसका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि बच्चों का मोटापा बढ़ जाता है, उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें बच्चों में देखने को मिलती है।
1: जी
0: तो
1: हाँ।
0: हम तो हमारे पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके अपने बच्चों को और युवा साथियों को फोन से दूर रखना चाहिए। हमें बच्चों को सीमित मात्रा में फोन देना चाहिए, उनके कुछ घंटे फिक्स होने चाहिए जब बच्चा अपने फोन के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। और साथ ही माता पिता को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चा फोन चला रहा है तो वो उनके पास में ही बैठे, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल फोन पर अलग अलग प्रकार के ऐसे नोटिफिकेशन आ जाते हैं जिससे बच्चों को उन चीजों के बारे में पता नहीं होता है और वो उन्हें डायल कर देते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी जो धोखाधड़ियां हैं वो हो जाती हैं, वो अपना ओटीपी शेयर कर देते हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ चीजें पता नहीं होती हैं। लेकिन इस तरीके के जो कृत्य हो जाते हैं तो नुकसान हमें ही भुगतना होता है। इसलिए मोबाइल फोन को लेकर, इंटरनेट को लेकर जो भी चीजें चल रही हैं उनको हमें ध्यान में और सीमित मात्रा में उसका प्रयोग करना है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों ये तो हमने शारीरिक और मानसिक नुकसान के बारे में जाना। अब यहीं आपको बताएं तो इंटरनेट के अति उपयोग से हमारे अंदर सामाजिक नुकसान भी होते हैं।
0: जी हाँ,
1: यानी कि श्रोताओं कहने का तात्पर्य यही है कि सोशल मीडिया ने समय की बर्बादी को बहुत बढ़ावा दिया है।
0: जी हाँ,
1: और किशोर अवस्था की उम्र में बच्चे चकाचौंध और ग्लैमर की ओर आकर्षित होते हैं, वे अपने मित्रों को, अंजलि जी परिवार के सदस्यों को सोशल मीडिया पर अपने फोटो पोस्ट दिखाने के बारे में चिंतित रहते हैं। इसके बाद वे लाइक्स, टिप्पणियों, इन सभी को देखने के लिए अपनी पोस्ट को दोबारा चेक करते रहते हैं। ऐसा करने से दोस्तों समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही हम उस चीज के प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, डेटिंग चैटिंग एप्स भी पढ़ाई में बाधा साबित होते हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। और ये जो समय है उसमें हम ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखते भी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी के जो भी युवा साथी हैं उनका हाँ। यही होता है कि हम अलग अलग जगहों पर घूमने जाएं, अलग अलग प्रकार के रील बनाएं, फोटो बनाएं, जिससे हम अगर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो हमें बहुत सारे लाइक मिलेंगे।
1: बिल्कुल,
0: अगर उन्होंने कोई चीज की है और वैसे ही कोई चीज किसी और ने की है, अगर उनके फ्रेंड्स के लाइक ज्यादा बढ़ गए तो उनको टेंशन हो जाती है कि उसको इतने लाइक मिल गए, मुझे तो लाइक नहीं मिले, मेरे इतने फॉलोवर्स नहीं, उसके इतने ज्यादा फॉलोवर्स हैं। ये जो सारी चीजें हैं वो इस समय में उनकी चिंता का विषय बन जाती है और हम देखते हैं कि वो अवसाद में चले जाते हैं। तो हमें हमारे बच्चों को इन चीजों से दूर रखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो चीजें हैं वो कुछ समय की होती है, ये हमें चंद सेकंड की खुशी देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हमारा जो जीवन है, जिस तरीके से हमें जीना है, हमारी जो जिंदगी है जो हम बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं, वहां पर हम इन फालतू चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं। वहीं हमारे बच्चों को हमें ये भी सिखाना होगा कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना है और कम इच्छाओं के साथ हमारा जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि हम देखते हैं कशिश के हमारी इच्छाओं की कोई गिनती नहीं है।
1: जी हाँ।
0: हमारी इच्छाएं जो हैं, अगर हमें आज कोई चीज मिली तो कल हमारी जो इच्छाएं वो और बढ़ जाती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इच्छाएं बढ़ने के साथ साथ हमारे जीवन की मुश्किलें भी बढ़ती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम क्यों ना हमारे जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें सीमित रखें और सीमित तरीके से अपने जीवन को बिना दिखावे के साथ जीते हुए अगर हम जीते हैं तो हम मानसिक तनाव, अवसाद, डिप्रेशन की जो बातें करते हैं उनसे हमारे युवा साथियों को, हमारे बच्चों को और हमारे घर परिवार को दूर रख सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों हम कह सकते हैं कि माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के साथ साथ किस तरह के बच्चे उसका उपयोग कर रहे हैं उस पर भी उन्हें नजर रखनी चाहिए, और माता पिता को ऐसी साइटों पर नजर रखनी चाहिए और उनके बच्चों की इंटरनेट गतिविधियों की भी निगरानी उन्हें करनी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: ताकि वह ये जान सके कि वे इंटरनेट का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं या कुछ ऐसा गलत कृत्य उनके द्वारा किया जा रहा है।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि मोबाइल में इस प्रकार के गेम आते हैं जो बच्चे खेलते हैं, फिर उसमें पैसों की मांग की जाती है, बच्चे उसमें पैसे भी डाल देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि शुरुआत में तो उन्हें वो खेलना बहुत अच्छा लगता है और शुरुआत में उन्हें फायदे भी हो जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है, वो कर्ज में डूब जाते हैं। और इसके चलते हमने बहुत से बार अखबार में भी सुना है और देखा भी है कि बहुत से बच्चे जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे कृत्य हमारे जीवन में न हो इसके लिए हमें पहले से ही सचेत होना होगा। हमें जो सुविधाएं मिली है उसका हमें सीमित मात्रा में और ध्यान पूर्वक प्रयोग करना होगा, जिससे हमारा जो जीवन है वो मुश्किलों में ना पड़े।
1: जी हाँ अंजलि जी। तो श्रोताओं, बारी जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छी चल रही है, हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से इंटरनेट का बहुत ज्यादा उपयोग करने पर हमें कुछ नुकसान प्राप्त हो सकते हैं। तो ये बातें अंजलि जी आगे श्रोता साथियों से और भी हमारी बनी रहेंगी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है एक और गीत सुनने का।
0: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप जरूर बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों, हम गीत से पहले भी आपसे बात कर रहे थे किस प्रकार से माता पिताओं को अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए और वो किस तरीके से इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इस बारे में भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: अब यही अंजलि श्रोता साथियों को बता देते हैं कि दोस्तों, इंटरनेट मनोरंजन के कई स्रोतों की देन के लिए जाना जाता है। हालांकि इंटरनेट खाली समय को खर्च करने का एक अच्छा तरीका भी है, पर यह एक तरीके से हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है।
1: जी बिल्कुल।
0: दोस्तों, बहुत से लोग मनोरंजन के इन स्रोतों के इतने आदी हो जाते हैं कि वे अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं।
1: जी बिल्कुल। दोस्तों, इंटरनेट काम की उत्पादकता कम करती है। हम देखते हैं कि गुजरे जमाने के कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्शन थे, जिससे कर्मचारी केवल ईमेल साझा और व्यापार की योजनाओं पर चर्चा कर पाते थे।
0: बिल्कुल।
1: इन दिनों अधिकांश कार्यालयों में इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। यहाँ तक कि अगर लोगों को अपने आधिकारिक लैपटॉप पर इंटरनेट की पहुंच नहीं है तो वे इसे अपने मोबाइल पर शुरू कर सकते हैं और जब भी चाहे इसका उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, इंटरनेट मनोरंजन के इतने अलग अलग स्रोत प्रदान करता है कि इसको इस्तेमाल ना करने की नीयत को नियंत्रित करना मुश्किल है। लोग इन दिनों अपने मैसेंजर और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को हर थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहते हैं कि कहीं किसी व्यक्ति ने उन्हें संदेश तो नहीं भेजा। इससे उनका ध्यान भटकता रहता है और पूरी तरह से अपना काम पर ध्यान वह केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जिससे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है और वाकई ये चीज हम देखते हैं, क्योंकि जब हमारे फोन में नोटिफिकेशन आते हैं वो वाइब्रेट होता है तो हमारा ध्यान वाकई में फोन की ओर चला ही जाता है।
0: बिल्कुल।
1: कि कहीं कोई ग्रुप से अपडेट तो नहीं आई है, कहीं कोई अचानक से मेल तो नहीं कर रहा है या कोई हमारा इंतजार तो नहीं कर रहा है। ये बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में आ जाती हैं और इसके चलते हम हमारे काम पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते। इसी के साथ हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई पर अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि टेंथ के बाद हमारे जो बच्चे हैं उनके पास मोबाइल फोन आ ही जाता है। तो इसके चलते उनका जो ध्यान

0: हम एक मिनट में क्लिक करते ही उस चीज को पा लेते हैं। तो दोस्तों हमारा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि किसी भी चीज की अति हमारे लिए नुकसानदायक होती है।
1: जी हाँ।
0: अगर हम उस चीज का सीमित उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए कई फायदे दे सकती है।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन अगर हम उसके उपयोग को ज्यादा बढ़ा देते हैं या फिर हमारे जीवन में हम सिर्फ इंटरनेट के बारे में ही सोचते रहते हैं, वही काम करते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे जीवन को खत्म कर दें।
1: जी बिल्कुल। दोस्तों जो लोग गेम खेलने के आदि हैं उनके अपने गेम से हर घंटे कुछ समय निकालने का प्रयास करना होता है, यह भी काम एक बड़ी बाधा है।
0: बिल्कुल।
1: इतने सारी वेब सीरीज और वीडियो लगभग हर दिन इंटरनेट पर अपलोड हो रही है और यदि हम उन्हें देखना शुरू कर देंगे तो हम जो है हमारे जो काम है उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो समय है वो उन चीजों को देखने में लग जाएगा और हम हमारा जो काम है वो सही समय पर नहीं कर पाएंगे।
0: जी हाँ।
1: दोस्तों बहुत से जो शोध हैं उनसे पता चलता है कि लोग अपने काम के समय इंटरनेट पर अपने समय का अधिकतर हिस्सा बिताते हैं। इस प्रकार काम की जो उत्पादकता है वो कम होना निश्चित हो जाती है।
0: बिल्कुल। साथ ही दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि हमारे कार्य जीवन में भी असंतुलन पैदा हो जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: दोस्तों इन दिनों बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, यदि सेवा तुरंत प्रदान नहीं की जाती है तो ग्राहक आपको छोड़ देंगे। इसलिए दोस्तों इंटरनेट ने कहीं से भी दफ्तर की ईमेल चेक करना और सॉफ्टवेयर का उपयोग करना आसान बना दिया है, इसलिए कई बार लोगों को घर जाने के बाद अंजलि जी काम करना पड़ता है। यह व्यवसायों के लिए फायदेमंद है लेकिन कर्मचारियों के लिए नहीं, क्योंकि ऐसा काम जीवन में असंतुलन पैदा करता है। श्रोताओं
1: जी हाँ। दोस्तों दूसरा, इंटरनेट पर हर समय की जाने वाली गतिविधियों के कारण कामकाज में कमी आई है। इससे ज्यादातर लोग अपनी समय सीमा से पहले दिए गए काम को पूरा करने के लिए कार्यालय से लेट उसे करते हैं। अपने परिवार के साथ बिताए जाने वाला समय वे लैपटॉप पर खर्च कर देते हैं और वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन को बनाए रखने में असमर्थ हैं, जो परिवारों के बीच संघर्ष का एक कारण बनता है। और वाकई में ये चीज हम देखते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑफिस टाइम होता है वो 9 से 5 का होता है। इसी बीच हम अगर ऑफिस का काम करते करते फोन पर भी अपना समय व्यतीत करते हैं, जो हमारे कार्य हैं वो लेट हो जाते हैं और हमें लेट समय तक ऑफिस में बैठे रहना होता है। इसके चलते हम हमारे परिवार से बातचीत भी नहीं कर सकते, उनके साथ हमें जो समय बिताना होता है वो पर्याप्त तरीके से नहीं बिता पाते हैं। और जो पिता होता है वो अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पाता है, उन्हें तो ये भी नहीं पता होता है कि उनके बच्चों का स्कूल बैग कब लाना है, उनके स्कूल में फीस कब जमा करानी है, एडमिशन कैसे होगा, क्या होगा। तो इन सारी चीजों को चलते हुए हम देखते हैं कि परिवार में संघर्ष और कलह उत्पन्न हो जाता है।
0: जी हाँ।
1: तो अगर हमें इन सारी चीजों से बचना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो जीवन है वो बहुत अलग तरीके का है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत अलग हैं। अगर हम हमारे जीवन में उन जिम्मेदारियों को अपना अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आज जो हम इंटरनेट के नुकसान के बारे में जो बात कर रहे हैं वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बिल्कुल अंजलि जी। दोस्तों हम कह सकते हैं कि इंटरनेट व्यवसाय को बढ़ाने और उसे बढ़ावा देने और पेशेवर रूप से विकसित होना एक महान मंच है। हमें इसे विचलित होने के बजाय दिए गए काम के उपयोग के लिए इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेट के फायदों के रूप को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यवसाय हैं वो इंटरनेट के माध्यम से किए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: इंटरनेट के माध्यम से लोग जो है अपने शॉप्स की फोटोज डालते हैं, हर बार जो उनकी शॉप में नया नया माल आता है वो भी वो उस पे अपलोड कर देते हैं, जिससे लोग जो है जो ग्राहक है उनके वो बन जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जो हमें पैटर्न चाहिए वो इस शॉप पे हमें मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें इससे आसान हुई है, लेकिन बहुत सी जो चीजें हैं उसके दुष्परिणाम हमें जो देखने को मिलते हैं उनके बारे में हमें गहन विचार करना होगा।
0: जी हाँ।
1: ताकि हम इन सब चीजों से बाहर निकल पाए।
0: बिल्कुल अंजलि जी। श्रोता हम देखते थे कि पहले हमें बैंक की लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन आज हम घर बैठे ही पैसे निकाल भी सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं अंजलि जी।
1: हाँ।
0: साथ ही दोस्तों टिकट बुकिंग की बात करें तो पहले भी हमें टिकट बुकिंग कराने के लिए स्टैंड के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज हम घर बैठे ही हमारी सीट बुक कर लेते हैं।
1: जी हाँ।
0: और जब हमें जाना होता है उसी के जस्ट 5 मिनट पहले हम पहुंच कर वहाँ पर अपना कार्य कंप्लीट कर लेते हैं अंजलि जी। तो ये सब दोस्तों किसकी वजह से हो पाया है? हम कह रहे हैं कि ये सब इंटरनेट की वजह से ही हो पाया है।
1: जी बिल्कुल। दोस्तों इंटरनेट आजकल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। आजकल परिवार को इकट्ठा करने से लेकर बिजली के बिलों का भुगतान करने तक सब कुछ इंटरनेट के उपयोग के साथ किया जा रहा है।
0: जी हाँ।
1: हालांकि इसके बहुत सारे हमें फायदे हैं देखने को मिलते हैं, लेकिन वही नुकसान भी हैं। जैसा कि आज हम नुकसान को लेकर बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधित भी ढेर सारे कारण हमें इंटरनेट के माध्यम से देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइग्रेन। हम देख रहे हैं कि अभी के समय में ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। घंटों तक मोबाइल या लैपटॉप पर इंटरनेट का उपयोग करने से माइग्रेन हो सकता है। कई इंटरनेट उपयोगकर्ता इस समस्या की शिकायत करते हैं। और उन्हें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बिताए समय को कम करने की सलाह भी दी जाती है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन

0: इस लत से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार लगातार सिर दर्द, माइग्रेन की शिकायत होना आम बात सी हो गई है।
1: बिल्कुल। साथ ही दोस्तों, नेत्र दृष्टि पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक बात तो ये साफ जाहिर हो जाती है अंजलि जी कि जितना हम इंटरनेट सर्फ करने की स्क्रीन को देखते हैं उतना ही हमारी आंखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं, ऐसा उन लोगों में विशेष रूप से आम है जो बिस्तर पर अपने मोबाइल पर इंटरनेट को सर्च करते हैं।
0: जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी इस समस्या से गुजरना पड़ता है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं वो बचपन से ही इसकी लत में घिर जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और आगे चलकर उनकी जो ये लत है वो छूटती नहीं है। और हम देखते हैं कि बच्चे जो है उनके बड़े बड़े ऐसे चश्मे लग जाते हैं, उन्हें नेत्र रोग हो जाता है। यहीं अब हम बात करें पीठ दर्द की, तो हम देखते हैं कि कुर्सी पर बैठकर फिल्में देखना या लगातार ऑनलाइन गेम खेलना बुरी लत हो सकती है। अगर आपको दोस्तों ये आदत है तो आपको इसे तुरंत ही रुकना होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस अनुभव का आनंद लेने के लिए घंटों तक बैठे रहते हैं और इस वजह से उनकी पीठ में दर्द होने लगता है।
1: बिल्कुल। साथ ही दोस्तों, वजन बढ़ने की समस्या भी हमें मिलती है, यानी कि बच्चे इन दिनों अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने की बजाय अंजलि जी घर पर रहकर ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करते हैं, या फिर कहीं इंटरनेट पर हर समय वीडियो देखते रहते हैं।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, वयस्कों के साथ भी ऐसा ही मामला है। बाहरी गतिविधियों में सामाजिक रूप से शामिल होने की बजाय वे इंटरनेट पर समय बिताना पसंद करते हैं।
0: जी हाँ,
1: शारीरिक गतिविधि की कमी ने लोगों में वजन वृद्धि की समस्या को जन्म दिया है। दोस्तों, इस तरह हम कह सकते हैं कि जीवन शैली से कई लोगों में मोटापे की समस्या उत्पन्न हुई है।
0: जी बिल्कुल। और यही बात करें कशिश, हम सोने में परेशानी, हम देखते हैं कि रात को बहुत देर तक मोबाइल चलाना हमारे लिए, कह सकते हैं कि हमें मोबाइल चलाने की जो लत होती है उससे हमें नींद नहीं आती है।
1: बिल्कुल।
0: लोग इन दिनों अपने फोन को या तो तकिए के नीचे रखकर सोते हैं या साइड में रखकर सोते हैं। मोबाइल में बजी छोटी सी बीप की आवाज सुनकर भी लोग उठ जाते हैं और हर मिनट उन्हें अपने संदेश को जांचने की तीव्र इच्छा रहती है।
1: बिल्कुल।
0: सोते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना सोने की प्राकृतिक प्रक्रिया को रोक सकता है और सोने के विकारों का कारण बन सकता है। और वाकई में ये चीज हम देखते हैं, क्योंकि हम सोते समय जब मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती है उससे हमें ये लगता है कि नहीं, अभी हमें थोड़ा और देखना चाहिए, थोड़ा और देखना चाहिए। ऐसे करते करते रात की 11, 12, 1, 2 कब बजाती है हमें पता ही नहीं चलता है।
1: जी हाँ।
0: और इससे हमारी जो नींद है वो बाधित हो जाती है और इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ दोस्तों, दूसरे के मजे की तस्वीरों और पोस्टों को देखकर हीनता की भावना भी हमारे अंदर पैदा हो सकती है। लोग इन दिनों खुद के इंटरनेट पर झूठी छवि फैला रहे हैं अंजलि
0: जी,
1: ताकि बड़ी संख्या में दूसरों का ध्यान वे आकर्षित कर सकें। दोस्तों, जो लोग एक साधारण जीवन जी रहे हैं वे खुद को कमतर और अलग अलग महसूस करते हैं, क्योंकि वे अक्सर उन लोगों को देखते हैं जो हर समय जश्न मनाते हैं और मजे करते हैं।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, इंटरनेट ने परिवार के सदस्यों के बीच दूरी भी बनाई है और यह सब अवसाद को जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल। दोस्तों, इंटरनेट ने दूर देशों में रहने वाले लोगों की दूरी को कम कर दिया है, पर वहीं साथ में नजदीक रहने वाले लोगों को भी दूर कर दिया है।
1: बिल्कुल।
0: लोग अपने दूर के मित्रों रिश्तेदारों के साथ जुड़ने और उन्हें संदेश भेजने में इतने तल्लीन हो गए हैं कि वे अपने बच्चों और परिवार के सदस्य की ओर ध्यान देना भूल गए हैं।
1: जी हाँ।
0: सोशल मीडिया साइटों, मैसेंजर और डेटिंग एप्लीकेशन ने रिश्तों में धोखे को जन्म दिया है। इनसे दंपतियों के बीच झगड़ों को बढ़ावा भी मिल जाता है और जिनका उनके बच्चों और परिवार पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है।
1: जी हाँ।
0: और वाकई में ये जो समस्या है वो हम निरंतर बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि किस तरीके से हमारा जुड़ाव है वो हम अपने परिवार वालों के साथ रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 के पास फोन होता है।
1: बिल्कुल।
0: और हम देखते हैं कि शाम का समय तो ऐसा होता है कि 5 हमें एक एक अलग अलग कोने में फोन चलाते हुए दिखते हैं।
1: जी हाँ।
0: उनके जो भावनात्मक जुड़ाव की जो हम बात करते हैं कि एक जगह पर बैठकर बात करना, ये करना, वो करना, वो अभी के समय में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो अपने मोबाइल में इस तरीके से लिप्त हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिरकार असली जीवन होता क्या है, असली जीवन जीने का मजा क्या है।
1: जी हाँ अंजलि जी, दोस्तों हर चीज की अति बुरी है और इंटरनेट इसका कोई अपवाद नहीं है।
0: जी हाँ।
1: इंटरनेट के ज्यादा उपयोग का किसी व्यक्ति के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे पारिवारिक संबंध या फिर कहीं पारिवारिक जीवन भी नष्ट हो सकता है, इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए श्रोताओं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे परिवार के साथ हमें समय बिताना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो कशिश, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही हैं और ये बातें निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से इंटरनेट के जो नुकसान है वो हमें हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि गीत से पहले हम जान रहे थे कि इंटरनेट के कारण हमें स्वास्थ्य संबंधी ढेर सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कि माइग्रेशन हो गया, नेत्र दृष्टि का प्रभाव हो गया, पीठ दर्द हो गया, वजन बढ़ना हो गया, सोने में परेशानी हो गई, डिप्रेशन हो गया और रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: तो अगर हम सभी चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में शारीरिक समस्याओं से दूर रहें तो हमें इंटरनेट का जो प्रयोग है वो सीमित मात्रा में करना होगा।
1: जी हाँ
0: साथियों, इंटरनेट कई लाभ प्रदान करता है। इसने हमारी जिंदगी को आरामदायक बना दिया है तथा हमारे जीवन स्तर को भी बढ़ाया है। हर काम इन दिनों इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी टिकट को बुकिंग करना हो या किसी प्रियजन को पैसे भेजना हो या फिर लंबी दूरी के संबंध को बनाए रखना हो। इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं। इंटरनेट तनाव, अवसाद, उत्पादकता और कई अधिक समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसा कि आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जान रहे हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथी दोस्तों, इंटरनेट के कुछ प्रमुख नुकसान और भी हैं, जैसे कि आपको बताएं तो काम में बाधा, यानी कि आप सभी इस बात से जरूर सहमत होंगे श्रोताओं कि इंटरनेट काम में बाधा का कारण बनता है।
0: जी हाँ,
1: ये एक प्रकार से नशे की लत है तथा एक काम से ध्यान भी हमारा भटकाता है। चाहे आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, या फिर एक छात्र हो, एक ऑफिस के कर्मचारी हो, या फिर बिजनेस चलाते हो, या फिर आप कोई गृहिणी भी हो सकते हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इंटरनेट आपका बहुत सारा समय व्यर्थ कर देता है। उस समय का उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जा सकता है दोस्तों, और सोशल मीडिया के आगमन ने इस लत को और बढ़ा दिया है।
0: जी हाँ,
1: जो लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं वे अब हर समय इंटरनेट से चिपके रहते हैं। अंजलि जी,
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ दोस्तों, हम देखते हैं कि हैकिंग भी एक इसका बहुत बड़ा नुकसान है। ईमेल खातों, बैंक खातों और लोगों के मोबाइल से किसी भी निजी जानकारी निकालने के लिए हैकिंग इन दिनों काफी सामान्य है।
1: बिल्कुल,
0: यह बड़ी चिंता का कारण बन गया है। हैकिंग की वजह से लोग अपने व्यक्तिगत रिश्तों में व्यावसायिक नुकसान और तनाव का सामना करते हैं। हम देखते हैं कशिश के, बहुत सी बार हमें ये सुनने को आता है कि फलाने के मोबाइल से बहुत सारे पैसे ओटीपी के कारण ले लिए किसी ने, तो ये जो सारी चीजें हैं वो हैकिंग का ही कारण है, क्योंकि हम जो है इंटरनेट वाली बहुत सी चीजों से बहुत ज्यादा, बहुत से जो लोग हैं वो ना समझ होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और इसकी वजह से वो अपना ओटीपी वगैरह, पर्सनल जो चीजें होती हैं वो शेयर कर देते हैं, और इसके कारण उन्हें बहुत सी बार बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं।
1: जी हाँ साथी दोस्तों, आज हर व्यक्ति ने इंटरनेट पर अपनी एक अलग प्रोफाइल बना रखी है। सोशल मीडिया पर हर चीज के बारे में सब कुछ बताना है किसी प्रवृत्ति बन गई है अंजलि जी, और लोग दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, पर वास्तव में उन्हें इससे परेशानी हो सकती है।
0: जी हाँ,
1: कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी प्रोफाइल को देखकर आपकी निजी जिंदगी के बारे में पता लगा लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत जानकारी को वे चुरा लेते हैं।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, इससे अपहरण और ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों को जन्म दिया है।
0: जी हाँ, इसी के साथ हम देखते हैं कि बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव। बच्चे इंटरनेट के माध्यम से लगभग हर चीज तक पहुँच जाते हैं। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को इंटरनेट का कनेक्शन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ताकि वे अपनी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। लेकिन बच्चे गेमिंग, सोशल मीडिया और मनोरंजन के अन्य स्रोत के लिए अक्सर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी हाँ,
0: कई बार जो बच्चे हैं वो बहुत सी अलग चीजों में फंस जाते हैं, जिसके कारण माता पिता को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होता है।
1: जी हाँ साथ दोस्त, स्पैमिंग की बात करें तो व्यवसायों के प्रचार के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह व्यवसायों को बढ़ावा देने और उनका विस्तार करने का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन यह उपभोक्ताओं के लिए सिर दर्द भी साबित हो सकता है।
0: जी हाँ
1: अंजलि जी, कई व्यवसाय अपने उत्पादों और सेवाओं के विपणन में लिप्त हैं, जिससे उनके द्वारा हमारे इनबॉक्स में कई ईमेल के साथ स्पैमिंग संदेश भेज दिए जाते हैं, और कई बार महत्वपूर्ण ईमेल स्पैमिंग की वजह से मिट जाते हैं।
0: जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों, जिस तरह से हम खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ने उसे आसान कर दिया है। हम अलग अलग चीजों की तलाश में खरीदारी करने के लिए समय को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: हमें जिस चीज की आवश्यकता है वह इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप चीजें की एक विस्तृत विविधता के माध्यम से उसे इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और उन्हें कुछ ही सेकंड में व्यवस्थित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इस तरह हम अक्सर हमारी आवश्यकताओं से अधिक खरीदारी कर पैसा खर्च कर देते हैं। कई ऑनलाइन रिटेलर सुविधा शुल्क और अन्य छिपे हुए शुल्क भी वसूल करते हैं, जिसका हमें बाद में पता चलता है। ये सभी खर्च हमारे खर्च को और ज्यादा बढ़ा देते हैं।
1: बिल्कुल साथी दोस्तों, शारीरिक गतिविधि भी आज हमारे जीवन में कम हो गई है, यानी कि ये भी हमें एक हानि पहुंचाती है। लोग इन दिनों ऑनलाइन वीडियो देखने, ऑनलाइन गेम खेलने और लोगों से ऑनलाइन जुड़ने में इतने तल्लीन हैं अंजलि जी कि वे बाहर जाने और बाहरी गतिविधि में शामिल होने के महत्व को अनदेखा कर देते हैं।
0: जी हाँ,
1: इससे दोस्तों हम देखते हैं कि मोटापा, माइग्रेन, नींद की बीमारी जैसी कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
0: जी हाँ।
1: और खास बच्चों की बात करें तो बच्चों के समुचित विकास और प्रगति के लिए भी बाहर खेलना जरूरी है, लेकिन इन दिनों वे ऑनलाइन गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करते हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो दोस्तों इंटरनेट के कई नुकसान हैं। इन सभी नुकसानों में से सबसे बड़ी बात यह है कि उसने लोगों को एक दूसरे से अलग थलग कर दिया है। हम सभी अपने मोबाइल में इतने मग्न हो गए हैं कि हम अपने आसपास के लोगों की जरूरत को अनदेखा कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इंटरनेट की वजह से बच्चों और बुजुर्गों जिनका सबसे अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता है कि और हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यह सही समय है कि हमें अपने इंटरनेट के उपयोग को सीमित करना चाहिए और स्वस्थ जीवन जीना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों बाधी, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे इंटरनेट के फायदे और नुकसान को लेकर चली रही थी, हमने जाना कि किस प्रकार से इंटरनेट के ढेर सारे नुकसान हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी होते हैं।
0: जी हाँ।
1: और साथ ही हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और हमारी जो दिनचर्या है उस पर भी इसके कई नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब जैसा कि समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी ढेर सारी आपसे हमारी हो ही चुकी हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको यहाँ पर सुनवाना चाहेंगे एक और गीत।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें रही हैं इंटरनेट के नुकसान को लेकर, आशा करते हैं कि ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोताओं, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdhara.org,
1: radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082463। तो श्रोता साथियों एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिएगा क्योंकि इसी के ज़रिए आप अपने फरमाइश के गीतों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है आकोट महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है वारिस, गीत के बोल ही मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत की अनुरोध करता है नितिन पाटिल, नंदिनी पाटिल, सतीश पाटिल, सविता पाटिल, बालू पाटिल जी। कोका भिलाई से जुड़ना चाह रही हैं उत्तम सिंह जंगील, मोरस जंगील, अनिल कुमार जंगील, अजित कुमार जंगील, आयुष जंगील, नंदिनी जी जंगील। सुकरी कला से जुड़ रही हैं अमित जंगील, सुकुन जंगील, आरुषि जंगील, ओशिका जी जंगील, आदित्य जंगील और अंजलि जी जंगील। इसी बीच जुड़ना चाह रही बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाह, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। जमशेदपुर से जुड़ रही हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है वारिस, गीत के बोल ही मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अमरावती महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है परख, गीत के बोल हैं ओ साजन बहार आई। इस गीत की फरमाइश करता है श्याम कीटी, वंदना कीटी, कार्तिक कीटी, भाविका कीटी और कीटी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रही हैं। इसी भी जुन्नाचार्य भागवत से आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इस गीत के अनुरोध करता है जनकपुरी सहारनपुर से जोन टिकिस्टो, रोजे टिकिस्टो, पॉल टिकिस्टो, विलिस टिकिस्टो। जौनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरत अबू समझी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ओ सजना बरखा बार आई। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है यतला महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है साजन, गीत के बोल हैं मेरा दिल भी कितना पागल है। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शंकरलाल जयसवाल, गणेश लाल जयसवाल, शिवप्रसाद जयसवाल, अपर्णव जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल और तृप्ति जी जयसवाल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानु शानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। इसी बीच जुड़ रहे हैं भलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, प्रमिला खटक, चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं सुरेश डोमेन, शालिनी जी डोमेन, लाहौरा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं डोली प्रभा और प्रभा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही मेरा दिल भी कितना पागल है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है रायगढ़ बिहार से। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, गीत के बोल ही क्या खूब लगती हो। इस गीत को आवाज़ दी है मुकेश जी ने और कंचन जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है उमाराज, दीपक उमा, रमेश उमा, अरविंद उमा और कमल उमा। जेल रोड खरवा से जुड़ना चाह रही हैं दुर्गा कुमारी, सपनाताई, राकेश ताई जी। डुमराव से जुड़ना चाह रही हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र जी यादव। इसी बीच जुड़ना चाह रहे महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रजेश संगई, प्रदेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है बक्सर शहर से फातमा नाज, बीबी अंसारी, डब्लू जी अंसारी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत की बोल ही क्या खूब लगती हो। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा श्रोता साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दिल्ली से। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है दिल्ली से दिलावर खान, अजीना बानू, एलिसा नायाब जी। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। धनुरी तेलीवाला से जुड़ना चाह रहे हैं निसार सलमानी, नौसार सलमानी, बीपी आलिया, आयन बाबू। इस गीत के अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीचा, पूनम गगनीचा, विशाल प्रिया, दिशा ने निमित आहूजा जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका नमत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, सिमरत और मन्नत, विजेंद्र जी जान जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, अभी हमने अनुराधा जी और उदित नारायण जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे ये धरती चांद सितारे। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पुराना तालाब डुमराव से। फिल्म का नाम है नसीब, गीत के बोल हैं मेरे नसीब में तू है किने। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है वल्ली उल्ला अंसारी, उस्मान अज अंसारी, शबनम बानो। बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, फातिमा नाज। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं सतीश अनिजा, बिमला जी अनिजा। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं राज खोरवाल, रानी खोरवाल, प्रकाश जी खोरवाल। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपन नाम नामदेव। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु खुराना, रिधांजी खुराना। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मेरे नसीब में तू है कि नहीं। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा गुरिया चले। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अनिंदा भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से। सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, पणे प्रसिद्ध जी, हीरामन शेंडे, प्रतिभा जी गुड़ाने, महेश राम टेके जी। भागपत से जुड़ना चाह रहे जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, नमन, गुरशब्द, गुरकिरत सिंह राहुल, मन्नत और विजेंद्र जेजान जी। भद्रावती से जुड़ रहे हैं अब्दुल लोहेवाला, शाहिदा शेख, शाहिल शेख, अब्दुल्ला जी शेख। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। गीत के बोल ही चुरा के दिल मेरा गुरिया चली। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस प्यारे सी गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है संग मुंगी से। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मेली। गीत के बोल हैं, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है बाबा साहेब कणककर, साखरबाई कणककर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणेश्वरी कणककर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। सरार पेड़गाम कश्मीर से जुड़ना चाह रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन नजमुद्दीन केसरुद्दीन जी। मराठवाड़ा से जुड़ रहे हैं समेद मशरूम, साइना हसन, आगजनासिया, आफिया इब्राहिम और राम भवतनवी जी। जौनपुर से जुड़ रहे हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमानी इरशाद, नवदेशराद, हजरत अबू सम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मेली। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे मेरे साथ में, आगे भी आप इसे मेरे साथ में ही सुन पाएंगी। श्रोता साथियों, आप हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं या आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिएगा, हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोहका बलाई सी। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आरुषि और नंदिनी जी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ रहे हैं अमित सुकुन, आरुषि जंगेल, ओशिका जंगेल और अंजलि जी जंगेल। इस गीत के अनुरोध करता है भेड़शर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मिलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, दंची बिट्टू, बीबी कुलेश जी। सनावत से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद सूफियान, मोहम्मद थासिम, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद बब्बू डब्बू जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पटेल नगर मालोट से। फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गीत के बोल ही तू मुझे कबूल। इस गीत की फरमाइश करता है रमेश कुमार झांझोरिया, गीता रानी झांझोरिया, गंदीप झांझोरिया, गुरजू झांझोरिया और गुड्डू जी झांझोरिया। और भी साथी जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, शानू मानू, बबन मीनू, काना हरे प्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी निमित आहूजा जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही तू मुझे कबूल। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बोरावड़ से। फिल्म का नाम है खुद्दार, गीत की बोल है तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सुनीता, कमलेश, राकेश और पूजा जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं फलोदी से गोविंद, ममता, नरेश और प्रियंका जी। पिपाड़ शहर से जुड़ना चाह रहे हैं राजू, सीमा, मुकेश और अंजू। भिलाड़ा से जुड़ रहे हैं प्रकाश, भावना, कैलाश और मीना जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ से अर्जुन, संतोषी, रवि और ज्योति जी।

श्रोता साथियों, अभी हमने कुमार सोनू और अलका जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थी, तुम सा कोई प्यारा, तुम सा कोई मासूम नहीं है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है उत्तर प्रदेश सिकंदरपुर से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और शबीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है संदीप, पूजा, विवेक और शालिनी जी। बरौली से जुड़ना चाह रहे हैं राजीव, कंचन, पंकज और मोनिका। नगला से जुड़ रहे हैं दीपक, आरती, रोहित और वनिता जी। रामपुर से जुड़ना चाह रहे हैं नीरज, कविता, शुभम और शिखा जी। मऊ से जुड़ना चाह रहे हैं संजीव, पूनम, कमल और निशा। अस्तुपुरा जिला मऊ से जुड़ रहे हैं। जालौन से जुड़ना चाह रहे हैं अतुल, ज्योति, मनोज और रचना जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बदनावर से हरीश, सीमा, राजेंद्र और सुनीता जी। सरदारपुर से जुड़ रहे हैं देवेंद्र, अनिता, राजकुमार और आशा जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और शबीर कुमार जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने लता मंगेशकर जी और शब्बीर कुमार जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थी गोरी है कलैया। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अस्तुपुरा जिला मऊ से। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। गीत की बोल ही तड़प तड़प के इस दिल से। इस गीत की फरमाइश करता है अस्तुपुरा जिला मऊ से जुड़ रही मजीर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी, मलियाना सरधाना मेरठ से जुड़ना चाह रही हैं अनिल जैन, जैन साहब, सीएम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन आदि जैन। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं कापरेंसी, रामलाल, चेतना देवी, ललिता कुमारी, बबीता शंकर और भगवान सिंह, संगीता देवी और रवि कुमार। इस गीत के अनुरोध करता है सूरतगढ़ से मंजू देवी, गोपाल सिंह, लक्ष्मी कुंवर, नरेश कुमार, आशा देवी, मुकेश सिंह, चंद्रप्रकाश जी और राधा कुमारी जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे बनेड़ा से किरण देवी, विनोद सिंह, प्रेमनंद, सुनील देवी और हरिशंकर जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। गीत के बोल हैं तड़प तड़प के इस दिल से। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिहार से। फिल्म का नाम है वंश। गीत के बोल हैं आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। इस गीत की फरमाइश करता है उमाराज, दीपक उमा, रमेश उमा, जगदीश उमा, कमलेश ताई जी। खड़वा से जुड़ना चाह रही दुर्गा कुमारी, सपना ताई, राकेश ताई, डुमराव से जुड़ रही हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। चंद्रनगर से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र जी यादव। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रीतेश संगई, प्रजेश संगई, प्रीतेश जी संगई।

संघ ही परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। बक्सर से जुड़ना चाह रहे फातिमा राज, बीबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है वंश और गीत के बोल हैं आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। और श्रोता साथियों, यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज के शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं, इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे कसल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं, हमारा विषय रहने वाला है हमारे श्रोता साथियों के साथ कि अंगदान कितने लोगों को जीवन दे सकता है।
0: जी हाँ,
1: और अंगदान का क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हमारा विषय रहने वाला है अंगदान, एक निर्णय कई जीवन को बचा सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे श्रोता साथियों कि अंगदान क्या होता है, इसका क्या महत्व है, और साथ ही ये भी बातें होंगी कि हम देखते हैं कि अंगदान करने के पीछे कुछ भ्रम भी लोगों में पैदा होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उन भ्रम से हम दूर कैसे रह सकते हैं और अंगदान करने के क्या फायदे हो सकते हैं, ऐसी ढेर सारी बातें श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे होंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना जागृति जी शुरुआत पहले एक पैरे से गीत के साथ ही हम करें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि कशिश गीत से पहले हमारे युवा साथियों को हमने विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं अंगदान को लेकर, कि अंगदान एक निर्णय कई जीवन को बचा सकता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि जीवन ईश्वर का जो है वो सबसे अनमोल उपहार है, लेकिन कई बार गंभीर बीमारियों या दुर्घटनाओं के कारण कशिश कुछ लोगों के अंग काम करना बंद कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में उनके लिए एकमात्र उम्मीद किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया अंगदान होता है। एक व्यक्ति का लिया गया ये निर्णय कई लोगों के जीवन में नई सुबह लेकर आ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: आज जानते हैं कि अंगदान क्या है और इसका महत्व क्या है, इससे जुड़े भ्रम क्या है और युवाओं की इसमें क्या भूमिका हो सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो सबसे पहले बात करते हैं अंगदान होता क्या है।
0: बिल्कुल,
1: तो साथियों अंगदान का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वस्थ अंगों या उत्तकों को किसी ऐसे व्यक्ति को दान करना जिसके शरीर में वह अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहा हो।
0: बिल्कुल,
1: वैसे जागृति जी दान दो प्रकार से हो सकता है। पहला तो ये श्रोता साथियों कि जीवित रूप से अंगदान किया जाए, जिसमें कोई स्वस्थ व्यक्ति अपनी एक किडनी, लीवर का कुछ हिस्सा या फिर अन्य कुछ उत्तक दान कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: और दूसरा दान होता है मृत्यु के बाद अंगदान। इसमें श्रोता साथियों जब किसी व्यक्ति की ब्रेन डेथ हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसकी इच्छा या फिर परिवार की सहमति से उसके अंग जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसे हम मृत्यु के बाद वाला अंगदान कहते हैं जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, बहुत कम लोग जानते हैं कि एक अंगदाता कई लोगों की जान बचा सकता है।

0: है। एक व्यक्ति के दोनों गुर्दे दो लोगों को जीवन दे सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लीवर दो लोगों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हृदय किसी एक व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। दोनों फेफड़े दो अलग अलग लोगों को बचा सकते हैं। अग्नाशय आंत और अन्य अंग भी प्रत्यारोपण में उपयोगी होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आंखों की कार्नियों से दो लोगों की रोशनी मिल सकती है। त्वचा हड्डियों और उत्तक भी कई मरीजों के उपचार में काम आते हैं। यानी कि श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि एक व्यक्ति अपने जाने के बाद भी कई परिवारों की खुशियां लुटा सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि भारत में हर वर्ष लाखों लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन दोस्तों अंगदान करने वालों की संख्या बहुत कम होने के कारण अनेक मरीज समय पर उपचार नहीं पा पाते। कई मरीज वर्षों तक डायलिसिस पर रहते हैं, कोई नया दिल मिलने पर इंतजार करता है तो कोई लीवर प्रत्यारोपण का। अक्सर श्रोता साथियों केवल अंगों की कमी के कारण कई अनमोल जिंदगियां हमसे दूर चली जाती है। जागृति जी, यदि समाज में जागरूकता बढ़े और अधिक लोग अंगदान का संकल्प लें तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि हमारे वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी है। अगर युवा अंगदान के बारे में सही जानकारी लेते हैं, अपने परिवार और समाज को जागरूक करते हैं तथा इस विषय पर सकारात्मक सोच विकसित करते हैं तो आने वाले समय में भारत अंगदान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, युवा सोशल मीडिया, कॉलेज, विद्यालय, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: जब कोई व्यक्ति अंगदान करता है कशिश, तब वो किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन देता है। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि किसी माँ का बेटा फिर से मुस्कुराने लगे, किसी पिता को अपनी बेटी की शादी देखने का अवसर मिल जाए, किसी बच्चे को फिर से खेलने का मौका मिल जाए, किसी विद्यार्थी की पढ़ाई दोबारा शुरू हो जाए।
1: जी हाँ।
0: ये सब संभव हो सकता है केवल एक निर्णय से। इसलिए कहा जाता है अंगदान केवल अंगों का दान नहीं बल्कि जीवन, उम्मीद और मुस्कान का दान है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं कि अंगदान एक निर्णय है लेकिन कई जीवन का आधार है श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल।
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे लेकिन अभी क्यों ना एक और गीत के साथ पहले मनोरंजन करें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बातचीत का जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि अंगदान किस प्रकार से एक निर्णय है लेकिन कई जिंदगियां बचा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: गीत से पहले जैसा कि हमने जाना था जागृति जी, कि अंगदान केवल चिकित्सा नहीं होती बल्कि मानवता होती है। यही अगर बात करें अंगदान से जुड़े कुछ भ्रमों की, तो श्रोता साथियों, हमारे समाज में अब भी कई भ्रांतियां हैं। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि अंगदान से शरीर का सम्मान कम हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें धर्म अनुमति नहीं देता। कुछ लोग तो जागृति जी डरते हैं कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविकता तो ये है साथियों कि अंगदान पूरी तरह वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। हर मरीज को बचाने का हर संभव प्रयास पहले ही किया जाता है। अंगदान केवल निर्धारित कानूनी या चिकित्सीय प्रक्रियाओं के बाद ही होता है। हम देखते हैं कि भारत के लगभग सभी धर्म मानव सेवा और जीवन बचाने को सर्वोच्च मानते हैं। इसलिए भ्रांतियों से नहीं साथियों, सही जानकारी से निर्णय लेना आपके लिए जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि भारत में अंग प्रत्यारोपण एक निर्धारित कानून व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। अंगों की खरीद फरोख्त पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
0: जी जी।
1: हर प्रत्यारोपण प्रक्रिया विशेषज्ञ डॉक्टरों और अधिकृत अस्पतालों की देखरेख में होती है। और श्रोताओं, इसका उद्देश्य केवल जरूरतमंद मरीजों को सुरक्षित और निष्पक्ष रूप से जीवन देना है।
0: जी जी।
1: अगर कोई व्यक्ति अंगदान का संकल्प लेता है तो केवल कार्ड बनवा लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने परिवार के सदस्यों को भी अपनी इच्छा के बारे में बताना होगा, क्योंकि अंतिम समय में परिवार की सहमति बहुत महत्वपूर्ण होती है।
0: बिल्कुल।
1: जब परिवार पहले से इस निर्णय से परिचित होता है तो वो कठिन परिस्थितियों में भी उस इच्छा का सम्मान कर पाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हमारे युवा साथी भी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैसे कि हमारे युवाओं को चाहिए कि अंगदान के बारे में वे पहले सही जानकारी प्राप्त करें, अफवाहों पर विश्वास न करें, अपने मित्रों और परिवारों को जागरूक करें, साथ ही कॉलेज और सामाजिक कार्यक्रमों में इस विषय पर चर्चा करें।
1: जी हाँ।
0: मानव सेवा को साथियों जीवन का हिस्सा बनाएं। यदि श्रोता साथियों सही आयु और परिस्थितियां हो तो अंगदान का संकल्प लेने पर आप विचार कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: और अपने परिवार से इस बारे में आप खुलकर भी बात कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज भी कई लोग केवल जानकारी के अभाव में अंगदान नहीं कर पाते हैं। अगर प्रत्येक गांव, कस्बे, विद्यालय, महाविद्यालय और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए तो हजारों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: सामुदायिक रेडियो, सामाजिक संस्थाएं, स्वास्थ्य विभाग और युवा संगठन मिलकर इस दिशा में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि धन दौलत पद और प्रतिष्ठा जीवन के साथ समाप्त हो जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन अगर हमारे कारण किसी की धड़कन चलती रहे, किसी की आंखों में रोशनी लूट आए या किसी परिवार की उम्मीद फिर से जीवित हो जाए तो यही सबसे बड़ी मानव सेवा है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए याद रखिए, मृत्यु जीवन का अंत हो सकती है लेकिन अंगदान किसी दूसरे के जीवन की नई शुरुआत बन सकता है। एक छोटा सा निर्णय किसी बच्चे को नया बचपन दे सकता है, किसी माँ को उसका बेटा दे सकता है, किसी पिता को उसकी बेटी और किसी परिवार को फिर से खुशियाँ लुटा सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि जैसा कि आज हम अंगदान को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें हमने जाना कि अंगदान केवल चिकित्सा का विषय नहीं है बल्कि करुणा, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, यह वह निर्णय होता है जो इंसान को मृत्यु के बाद भी अमर बना देता है। हमारे शरीर के अंग एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं जागृति जी, लेकिन वही अंग किसी दूसरे के शरीर में अगर धड़कते रहे, सांस लेते रहे और जीवन को आगे बढ़ाते रहे तो इससे बड़ा पुण्य और मानव सेवा का उदाहरण शायद ही कोई होगा।
1: बिल्कुल।
0: युवा होने के नाते साथियों, हमारी जिम्मेदारी है कि केवल अपने सपनों को हम पूरा न करें बल्कि ऐसा समाज बनाना भी है जहाँ हर व्यक्ति को जीवन जीने का अवसर मिले, सही जानकारी प्राप्त करे, अपने परिवार के साथ इस विषय पर खुलकर चर्चा करे साथियों, और समाज में अंगदान के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में अपनी भूमिका निभाएं।
1: बिल्कुल कशिश,
0: याद रखिए अंगदान किसी जीवन का अंत नहीं होता बल्कि कई नए जीवनों की शुरुआत है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, यदि हम अपने जीवन काल में किसी की सहायता नहीं कर पाए तो कम से कम अपने जाने के बाद किसी की सांसों, धड़कनों और मुस्कान का कारण जरूर बन सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अंगदान एक ऐसा उपहार है जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन इसका मूल्य अनगिनत जिंदगियों से भी बढ़कर है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी रही।
1: बिल्कुल।
0: और जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले यहाँ पर सुनते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं और अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज जरूरत है केवल अंगदान की बात करने की नहीं बल्कि सही जानकारी प्राप्त करने की, परिवार से संवाद करने की और समाज में जागरूकता फैलाने की। याद रखिए श्रोताओं, जीवन हमें प्रकृति से मिला है लेकिन किसी और को जीवन देने का अवसर हमें मानवता देती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए अंगदान को लेकर डर और भ्रम नहीं बल्कि ज्ञान, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी की सोच अपनाएं, क्योंकि एक निर्णय हमारा हो सकता है लेकिन उससे मिलने वाली जिंदगी किसी और की हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: एक कदम हमारा हो सकता है लेकिन उससे कई परिवारों की खुशियां लौट सकती है और शायद यही इंसान होने की सबसे खूबसूरत पहचान है।
1: बिल्कुल,
0: जीते जी इंसानियत निभाए और अपने जाने के बाद भी किसी की जिंदगी में उम्मीद बन जाए। इसी विचार के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, पर विदा लेने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहेंगे ताकि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो, पानी बचावो, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हमरो हमरो हमरो, घनी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए,
6: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है, एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है, फार्म भरो जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जई वरे अधिकार हमरा अपनावे, जानकारी सबनो हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
5: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
7: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार, बाजरा ज्वार रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू, बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो,
9: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
7: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ हुए। कशिश, आज हम एक ऐसे रिश्ते की बात करेंगे जो बच्चों के जीवन को अनुभव, संस्कार और अपनापन दे सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हमारी बातचीत का विषय है बच्चों को परिवार के बुजुर्गों से जोड़ने के लाभ को लेकर। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि कहते हैं कि घर की दीवारें ईंट पत्थर से बनती है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन घर को घर बनाते हैं उसमें रहने वाले रिश्ते, और इन रिश्तों में कशिश बुजुर्गों का स्थान उस पुराने पेड़ की तरह होता है जिसके छांव में कई पीढ़ियां सुकून पाती है।
0: बिल्कुल।
1: छोटा साथियों, आज के समय में बच्चों की दुनिया बहुत बदल गई है। मोबाइल की स्क्रीन पर उन्हें हजारों कहानियां मिल जाती हैं, इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब मिल जाता है और मनोरंजन के लिए उनके पास कई साधन हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि दादा दादी और नाना नानी की गोद में बैठकर सुनी गई एक कहानी का अनुभव किसी स्क्रीन से मिल सकता है?
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, बुजुर्गों के पास केवल पुरानी यादें नहीं होती हैं, बल्कि जीवन का अनुभव, परिवार की कहानी और स्थानीय संस्कृति, लोकगीत, लोक कथाएं और रिश्तों को निभाने की समझ भी होती है।
0: बिल्कुल।
1: जब बच्चे उनके साथ समय बिताते हैं तो वे किताबों से अलग एक ऐसी शिक्षा पाते हैं कशिश, जो सीधे जीवन से आती है। आज कार्यक्रम में हम यही समझेंगे कि बच्चों को परिवार के बुजुर्गों से जोड़ना क्यों जरूरी है, इससे बच्चों के व्यवहार और व्यक्तित्व में क्या बदलाव आते हैं, और परिवार इस खूबसूरत रिश्ते को मजबूत बनाने में कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: बातें ढेर सारी कार्यक्रम के माध्यम से रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत कर चुके हैं हम, और बात कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों को परिवार के बुजुर्गों से जोड़ने के लाभ क्या हो सकते हैं। अंजलि जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की तेज जिंदगी में बच्चों का समय पढ़ाई, मोबाइल, टीवी या दूसरी गतिविधियों में ही बढ़ चुका है।
1: बिल्कुल,
0: कई परिवारों में तो बच्चों और बुजुर्गों के बीच बातचीत का समय भी कम होता जा रहा है। बच्चे अपने आसपास की दुनिया को डिजिटल माध्यमों से जान रहे हैं, लेकिन घर के बड़े लोगों के अनुभवों से मिलने वाली सीख उनसे दूर होती जा रही है। इसलिए परिवार को ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जहां बच्चे बुजुर्गों के साथ समय भी बिताएं और उनके अनुभवों को भी समझें।
1: जी हाँ, यही कशिश। जब बात आती है, बुजुर्ग बच्चे के लिए अनुभव की जीवित किताब होते हैं। श्रोता साथियों, किताबों में बहुत सारी जानकारियां मिलती है, लेकिन बुजुर्गों ने अपने जीवन में जिन परिस्थितियों का सामना किया है उनसे मिलने वाली सीख अलग होती है। दादा दादी या नाना नानी बच्चों को अपने बचपन के अनुभव बता सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने कठिन परिस्थितियों में कैसे काम किया, परिवार को कैसे संभाला, खेती बाड़ी कैसे होती थी, त्योहार किस तरह मनाए जाते थे और पहले गांव का जीवन कैसा था। ऐसी बातें कशिश बच्चों को अपने परिवार और समाज के इतिहास से जोड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें पता चलता है कि आज जो सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं उनके पीछे पिछली पीढ़ियों की मेहनत भी रही है।
0: जी जी,
1: बुजुर्गों के पास कहानियों का एक बड़ा संसार होता है। लोक कथाएं, पंचतंत्र जैसी कहानियां, स्थानीय किस्से और अपनी जीवन से जुड़ी घटनाएं बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है।
0: बिल्कुल,
1: कहानी सुनते समय बच्चा केवल श्रोता साथियों मनोरंजन नहीं करता बल्कि उनमें छिपी सीख को भी समझता है। किसी कहानी के माध्यम से उसे ईमानदारी, साहस, मेहनत, दया, सहयोग और समझदारी जैसी बातें आसानी से समझाई जा सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: सबसे अच्छी बात यह है कि सीख बोझ की तरह नहीं लगती बल्कि कहानी के साथ सहज रूप से बच्चे के मन में उतरती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हमारे गांवों और क्षेत्रों की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। स्थानीय बोली, लोकगीत, पारंपरिक खेल, त्योहार, खान पान और रीति रिवाज, अंजलि जी, ये सभी हमारी पहचान का एक हिस्सा है। बुजुर्ग इन परंपराओं के सबसे अच्छे जानकार होते हैं। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि जब बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी से स्थानीय गीत सीखते हैं, पुराने खेल खेलते हैं या त्योहारों से जुड़े परंपराओं के बारे में सुनते हैं, तो वे अपनी संस्कृति से जुड़ते भी हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे उनमें अपनी जड़ों के प्रति सम्मान पैदा होता है। आज जैसा कि दोस्तों बच्चों को तुरंत परिणाम पाने की आदत होती जा रही है।
1: जी जी,
0: मोबाइल पर एक क्लिक करते ही मनोरंजन शुरू हो जाता है। ऐसे समय में अंजलि जी, बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करना बच्चों को धीरे धीरे सुनना और धैर्य रखना सिखाता है। जब बच्चा किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनता है तो वह सामने वाले की भावनाओं को समझना भी सीखता है।
1: जी जी,
0: ये आदत जो है वो उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत उपयोगी होती है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। यही बात आती है, बुजुर्गों से भावनात्मक सुरक्षा मिलती है बच्चों को। जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों को केवल भोजन, कपड़े और शिक्षा ही नहीं चाहिए, उन्हें प्यार, अपनापन और बिना किसी डर के अपनी बात कहने वाला कोई व्यक्ति भी चाहिए। कई बार बच्चे अपने मन की बातें बुजुर्गों से साझा कर लेते हैं जिन्हें वे माता पिता के सामने कहने से झिझकते हैं। बुजुर्गों का शांत व्यवहार और अनुभव बच्चों को भावनात्मक सहारा दे सकता है। बच्चों को यह एहसास होता है कि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार है।
0: बिल्कुल,
1: जब बच्चे बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं तो वे उम्र, अनुभव और जरूरत का सम्मान करना सीखते हैं। वे समझ पाते हैं कशिश कि परिवार में हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि घर में बुजुर्गों की बात सम्मान से सुनी जाती है और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है तो बच्चे भी वही व्यवहार सीखते हैं और यही संस्कार आगे चलकर उन्हें समाज में दूसरे लोगों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि इससे बच्चों को पारंपरिक ज्ञान भी मिलता है। जैसे कि साथियों, बुजुर्गों के पास केवल कहानियां ही नहीं बल्कि उपयोगी पारंपरिक ज्ञान भी होता है।
1: जी जी,
0: जैसे कि मौसम को समझना, पेड़ पौधों की पहचान करना, पारंपरिक खाद्य पदार्थों का उपयोग, खेती से जुड़ी जानकारी, पशु पक्षियों के व्यवहार को समझना और स्थानीय रीति रिवाजों की जानकारी होना। दोस्तों, इस ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाना हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। साथ ही अंजलि जी, बच्चों में प्रकृति और स्थानीय जीवन के प्रति जिज्ञासा भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देख सकते हैं कि बच्चों को बुजुर्गों से सीख मिलती है, लेकिन यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। बुजुर्गों को भी बच्चों के साथ समय बिताने से खुशी और अपनापन मिलता है।
1: जी हाँ,
0: बच्चे उनके जीवन में उत्साह और ऊर्जा लाते हैं साथियों, इसलिए परिवार में पीढ़ियों के बीच संवाद दोनों के लिए लाभकारी है
1: जी।
0: बच्चे अनुभव लेते हैं और बुजुर्ग जो हैं वो अपनी यादों और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं।
1: तो कशिश, इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान पा रहे हैं कि बच्चों को बुजुर्गों से जोड़ना क्यों जरूरी है और उसका क्या महत्व है। इस विषय पर आगे बातें और भी इसी तरह बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन इकोवेरे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं बात करते हैं बच्चों और बुजुर्गों दोनों को मिलता है अपनापन।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों को बुजुर्गों से सीख मिलती है, लेकिन ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। बुजुर्गों को भी बच्चों के साथ समय बिताने से खुशी अपनापन मिलता है। बच्चे उनके जीवन में उत्साह और ऊर्जा लाते हैं, इसलिए परिवार में पीढ़ियों के बीच संवाद दोनों के लिए लाभकारी है। बच्चे अनुभव लेते हैं और बुजुर्ग अपनी यादों और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, बच्चों को बुजुर्गों से जोड़ने का एक सरल तरीका यह है कि हर दिन कुछ समय परिवार की कहानी का समय बनाया जाए। रात में सोने से पहले दादा दादी या नाना नानी कोई कहानी सुनाए। सप्ताह में एक दिन बच्चे उनसे उनके बचपन के बारे में पूछे, पुराने गीत सुने, पारंपरिक खेल खेले या परिवार की पुरानी तस्वीर देखें।
1: बिल्कुल
0: इससे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने में मदद मिल सकती है और परिवार के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। बच्चों को छोटे छोटे कामों में बुजुर्गों की मदद करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जैसे कि पानी की गिलास देना, सामान लाकर देना, मोबाइल चलाने में मदद करना या कुछ समय उनके पास बैठकर बातचीत करना।
1: बिल्कुल
0: इन छोटी गतिविधियों से कशिश बच्चे सेवा, सहयोग और जिम्मेदारी का अर्थ व्यवहार भी सीखते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। साथी दोस्तों, विद्यालय जो है वो बच्चों को अपने परिवार के बुजुर्गों से जुड़ी कोई कहानी लिखने या रिकॉर्ड करने का कार्य भी दे सकते हैं। बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी से उनके बचपन, पुराने खेल, लोकगीत या गांव के इतिहास के बारे में पूछ सकते हैं अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही इसमें सामुदायिक रेडियो की भूमिका भी अहम होती है। जैसे कि दोस्तों, सामुदायिक रेडियो पर मेरे दादा दादी की कहानी, नानी की सीख या हमारे गांव की पुरानी बात जैसे कुछ कार्यक्रम किए जा सकते हैं। इससे बच्चों को बोलने का अवसर मिलता है और बुजुर्गों का अनुभव भी समाज तक पहुंचता है।
0: जी हाँ बिल्कुल कशिश, सबसे जरूरी बात यह है कि बुजुर्गों को केवल इसलिए बच्चों के करीब न लाया जाए कि वे बच्चों की देखभाल कर सकें, उन्हें परिवार के सम्मानित सदस्य के रूप में स्थान दिया जाए। बच्चे भी यह समझे कि बुजुर्ग कोई बोझ नहीं बल्कि परिवार के अनुभव और स्मृतियों की अमूल्य पूंजी है। बच्चों का भविष्य आधुनिक शिक्षा और तकनीक से जरूर बनेगा, लेकिन उनके संस्कार, संवेदनशीलता और जीवन की समझ परिवार के रिश्तों से भी मजबूत होगी। इसलिए बच्चों को किताबों और मोबाइल की दुनिया के साथ साथ अपने घर के बुजुर्गों की दुनिया से भी परिचित कराना जरूरी है। वहाँ उन्हें ऐसी कहानियाँ, अनुभव और अपनापन मिलेगा जो किसी स्क्रीन पर नहीं मिल सकता। श्रोता साथियों, बच्चे जब अपने परिवार के बुजुर्गों के करीब रहते हैं तो उनके सामने जीवन को समझने का एक अलग रास्ता खुलता है।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें ये एहसास होता है कशिश कि परिवार केवल साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं बल्कि अनुभव, यादों और रिश्तों की एक ऐसी कड़ी है जिसमें हर पीढ़ी का अपना महत्व है। बुजुर्गों के जीवन की यात्रा बच्चों को यह समझने में मदद करती है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती।
1: बिल्कुल,
0: और कठिन समय में धैर्य, मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ा जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि आज बच्चों के पास जानकारी के अनेक साधन हैं, लेकिन जानकारी और अनुभव में अंतर होता है साथियों। इंटरनेट किसी सवाल का जवाब कुछ ही सेकंड में दे सकता है, लेकिन जीवन की किसी परिस्थिति में सही व्यवहार कैसे करना है, रिश्तों को कैसे निभाना है और मुश्किल समय में मन को कैसे मजबूत रखना है, ऐसी बातें अक्सर अनुभव से ही सीखी जा सकती है।
0: जी जी,
1: परिवार के बुजुर्गों इन अनुभवों को सहज बातचीत और अपने उदाहरणों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही अंजलि जी, पीढ़ियों के बीच संवाद समाज को मजबूत बनाता है।
0: जी हाँ,
1: जब बच्चा अपने घर के बड़े लोगों से सवाल करता है, बुजुर्ग अपने अनुभव बताते हैं, तो परिवार में बातचीत की एक सुंदर परंपरा बनती है।
0: जी हाँ,
1: इससे बच्चे अपने परिवार की पृष्ठभूमि, गांव की पुरानी यादों और बदलते समय की कहानियों को समझ पाते हैं। साथ ही वे ये भी जान पाते हैं कि उनके परिवार ने किन परिस्थितियों में जीवन बिताया है और आज की सुविधाएं किस तरह धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है।
0: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने जाना कि बच्चों को बुजुर्गों से जोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरीके से ये बच्चों के जीवन को लाभ पहुंचाते हैं। बातें ढेर सारी हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: भाइयों ने बोनो जईवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियो बोनों रिश्तों है जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा कर रहे हैं तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर उसको 15 किलोग्राम भी माना जाए तो आज उसका बाजार मूल्य 75 से 90 रुपए के लगभग बैठता है। यानी कि एक किसान को प्रतिदिन 75 से 90 रुपए खर्च करने होंगे एक पशुधन के लिए। अब हम यदि देखें कि इसकी समस्या क्यों हो रही है, तो किसान तो भूसा तैयार करते हैं अपने खेत से, कई तरह का भूसा उनके घर में निकल के आता है, पर आजकल व्यवसायिक उपयोग भट्टों में और इस तरह से जो भूसे का व्यवसायिक उपयोग बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से बजाय भूसा पशुधन को मिलने के बाजार में ऊंचे दामों पर बिक जाता है। तो ये बड़ी समस्या है कि हमारे पशुधन के लिए आज भूसा कम पड़ता जा रहा है
1: जी, बिल्कुल।
0: और कुपोषण की समस्या से साधारण रूप से पशुधन पालक के लिए पशुधन को पालना आज उनके बूते से बाहर होता जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे पशुपालकों के पास जो पशुधन कम होते जा रहे हैं, ये उसका एक बड़ा कारण है जिस पे शायद हमें गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। तो अब बात ये होती है कि भूखा और कुपोषित पशुधन यदि आपके पास है तो वो कब तक और कितना दूध देगा। तो पशुधन आहार की बढ़ती समस्या हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि जैसा कि हम आपके माध्यम से जान पाए कि जिस तरीके से हमें पशु को सूखे और गीले चारे देने की आवश्यकता होती है, ऐसे में हम देखते हैं कि गीला चारा तो हमें कैसे भी मिल जाता है, लेकिन जो सूखा चारा होता है वो, जैसा कि आपने बताया कि उद्योग धंधों में बड़ी बड़ी चीजों में आजकल काम में लिया जा रहा है, ऐसे में बाजार में जब हम इस चीज को लेने जाते हैं तो उसके दाम हमें बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। ऐसे में हो सकता है कि पशुपालक जो किसान भाई है उसके पास इतने पैसे हो या न हो, तो इस वजह से हम देखते हैं कि पशुओं का जो कुपोषित होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो यही सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि असंतुलित आहार किन समस्याओं को जन्म देता है।
0: जी अंजलि जी, वास्तविकता में ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस समस्या को नहीं जानेंगे
1: जी
0: इसके उपाय की तरफ आगे बढ़ना मुश्किल होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो असंतुलित आहार या जिस तरह का भोजन एक पशुधन को मिलना चाहिए, जिसमें सूखा चारा, हरा चारा, दाने की मात्रा और अन्य कुछ मिनरल्स हैं
1: जी
0: जिनकी आपूर्ति जो है लगातार होती रहना चाहिए। अगर ये आपूर्ति नहीं हो पाती है तो असंतुलित आहार के कारण पशुधन में अनुवांशिक क्षमता से कम दुग्ध उत्पादन की एक समस्या होती है।
1: जी
0: छोटा दुग्ध काल होता है, यानी कि हम अगर सामान्य रूप से माने कि पशु ने 6 से 9 महीने तक दूध देना चाहिए, तो हो सकता है वो 2 महीने 3 महीने या 4 महीने अपने दुग्ध काल से आधे ही समय तक दूध दे।
1: जी
0: इससे दो ब्यात के बीच में अंतराल भी बढ़ता है कि लगातार जिस तरह से पशु को उत्पादन देना चाहिए वो उत्पादन हमको नहीं मिल पाता।
1: जी बिल्कुल।
0: प्रजनन क्षमता पे भी ये प्रभाव डालता है और उनकी प्रजनन क्षमता में कमी आती है अगर लगातार असंतुलित आहार पशुधन को मिल रहा है तो।
1: जी बिल्कुल।
0: इसी के साथ में उपापचयी क्रियाएं जो हैं, जो पशु के पेट से संबंधित होती है, जिसमें पाचन तंत्र में ये महत्वपूर्ण स्थान रखती है,
1: जी
0: इसमें भी स्थायी तौर पे समस्याएं आना शुरू हो जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: एक समस्या होती है जिसको दूध बुखार बोलते हैं, बाद में वो थनेला रोग में जाके परिवर्तित हो जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: किटोसिस की संभावना होती है और धीमा शारीरिक विकास, यानी कि पशुधन का जिस उम्र में जितना शारीरिक विकास होना चाहिए, चाहे वो ऊंचाई में हो, लंबाई में हो, या उसके शरीर में मांस का भरना हो, वो बहुत धीमा शारीरिक विकास होता है और वो उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए अंत में। इस सब के लिए हम ये सुनिश्चित करें कि अपने पशुधन को उच्च गुणवत्ता वाला स्वादिष्ट और संतुलित आहार मिले।
1: जी बिल्कुल।
0: ये पहला महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा आपको आपके पशुधन के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम और चयापचय क्रियाओं को सही रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं, सभी ने बोला है कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर और सस्ता होता है।
1: जी बिल्कुल। तो सर, इस तरीके से हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि अगर हमारे पशु जो हैं, अगर हम उन्हें संतुलित आहार नहीं देते हैं तो ढेर सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। तो ऐसे में हमारे जो किसान भाई बहन हैं, वो अपने चारे की पौष्टिकता को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम इसकी समस्याओं को जान पाए, अब इसके निदान की आवश्यकता हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहीं आप हमें बताइए कि किस तरीके से हम हमारे जो पशु को आहार दे रहे हैं उनमें इन सारी चीजों की पोषक तत्वों की पूर्ति कर पाए।
0: तो पशुधन पालक चारे की पौष्टिकता को कैसे बढ़ाए, इसके लिए हमारे पास स्थानीय स्तर पे जो उपाय उपलब्ध हो सकते हैं,
1: जी जी,
0: हम जिन उपायों पर चर्चा कर रहे हैं उसमें से हमारे वागड़ के किसान साथी अपने यहाँ उपलब्ध वनस्पतियों में से उसको चुन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: हरे चारे की कमी जो होती है वो एक मौसम विशेष में होती है, पर इस कमी के कारण पशुधन की जो निर्भरता होती है वो रेशेदार चारे यानी कि सूखे चारे पर बहुत बढ़ जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: कुछ समय तो ऐसा होता है जब उनके भोजन में या चारे में 100% सिर्फ सूखा चारा ही बच जाता है। तो सूखे चारे की पौष्टिकता को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें कुछ खनिज लवण हम मिला सकते हैं।
1: जी जी।
0: दूसरा है कि स्थानीय उपलब्धता के अनुसार सहजन के पत्ते इसमें मिलाए जा सकते हैं, पीपल के पत्ते इसमें मिलाए जा सकते हैं, सुबबूल और हमारा देसी बबूल ये भी बहुत पौष्टिक होते हैं।
1: जी जी।
0: इसके अलावा नीम, गुलर, बरगद, शहतूत आदि पत्ती पशुधन को आप सूखे चारे के साथ मिला के खिला सकते हैं। सरसों की और दूसरे हरे चारे को भी सूखी घास और कड़बी के साथ कुट्टी बनाकर खिलाने से हमें दो बड़े फायदे होते हैं कि एक तो चारा व्यर्थ नहीं जाएगा,
1: जी हाँ,
0: और इससे चारे की बचत भी होगी, जो हम सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि चारे की बचत मतलब पैसे की बचत।
1: जी बिल्कुल सर।
0: तो आहार में यदि खनिज लवण की कमी को दूर करना है हमको तो हम अपने पशुधन को प्रतिदिन 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर पाउडर बना के खिला सकते हैं।
1: जी जी।
0: जिसके बारे में वाग्धारा के साथी लगातार हमारे किसान भाइयों को बताते रहते हैं कि किस तरह से इसको तैयार किया जाता है।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम हमारे श्रोता साथियों को कह सकते हैं कि हमें हमारे जो पशु हैं उनमें पौष्टिक जो तत्व होते हैं उनके आहार में शामिल करने के लिए स्थानीय स्तर पर जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन्हीं को ही काम में लेना है। ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे गांव के जो क्षेत्र हैं वहां पर ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। ऐसे में इनका संरक्षण करना हमारे किसान भाई बहनों का, पशुपालक भाइयों का कर्तव्य है, ताकि वो अपने जो पशुधन है उनके आहार की पौष्टिकता को बढ़ा सके। तो सर, जैसा कि बहुत अच्छी बातें चल रही है, यहीं अब मैं जानना चाहूंगी कि जो चारे की समस्याएं हमें देखने को मिल रही है उससे हमारे किसान भाई बहन कैसे छुटकारा पा सकते हैं।
0: चारे की समस्या से छुटकारा पाना बहुत कठिन तो नहीं है यदि इस दिशा में हम प्रयास शुरू करें।
1: जी हाँ।
0: तो एक तो सामान्य सी चीज हो सकती है कि हर गांव में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पे बड़े या छोटे पशुधन को न पाला जाता हो।
1: जी बिल्कुल।
0: तो सारे समुदाय के लोग मिलके एक किसान समूह बना सकते हैं। तो किसान समूह बना के चारा उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।
1: जी बिल्कुल।
0: जिससे चारे के बढ़ते दाम को हम नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि हमें चारा खरीदना ही नहीं होगा।
1: जी जी।
0: तो हमारी बाहर के चारे के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल सर।
0: या शून्य हो जाएगी। इसके लिए ग्राम स्तर पे हम चाहें तो चारागाह विकास समिति के माध्यम से चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऐसी जगहों का चुनाव कर सकते हैं जहां पे हम चारे का और अधिक उत्पादन कर पाएं। हमारी उन आवश्यकताओं से अधिक जिस समय हमको चारा उपलब्ध नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं हम बाजार की तरफ देखने लगते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: इसके साथ ही यदि हम बात करें तो मनरेगा में कई सारे ऐसे काम होते हैं, तो हम इन कामों में अगर चारा उत्पादन को भी जोड़ें तो हो सकता है कि बड़ी आसानी से पूरे साल के चारे की आपूर्ति हम अपने ही गांव में अपने ही संसाधनों से सुनिश्चित कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि पशुधन में पौष्टिक आहार से हम कुपोषण की समस्या को दूर कर सकते हैं, हमने ढेर सारी बातों को जाना कि अगर पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलता है तो उनमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, साथ ही पौष्टिकता किस तरीके से हम चारे में बढ़ा सकते हैं और चारे की समस्या से हम कैसे छुटकारा पाएं, ये सारी बातों को हम जान पाए। तो सर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को, पशुपालक जो भाई बहन हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंजलि जी, मैं अंत में यही संदेश देना चाहूंगा कि अभी का जो बारिश का समय है वो हमारे लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वरदान है। इस समय में यदि हम अपने आसपास की खाली जमीनों को, वहाँ उगने वाले चारे को संरक्षित करें, अपने जो चारागाह हैं उनमें इस प्रकार के प्रयास करें जिससे वहाँ का चारा आगामी समय के लिए हम इस्तेमाल कर पाएंगे, तो उसको अभी से संभाल के रखें।
1: जी बिल्कुल।
0: अगर हम ये सब करते हैं तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हमारे जो वागड़ के किसान हैं, पशुपालक हैं, इन्हें ऐसे समय में जब हमें बाजार के चारे की तरफ देखना होता है, इस समस्या से निजात पाना बहुत आसान होगा।
1: जी बिल्कुल।
0: और इसके लिए सामलात की भूमियों को हम संरक्षित करें।
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बहुत ही प्यारा सा संदेश हमारे किसान भाई बहनों को दिया है, तो सर आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: वागड़ रेडियो और सभी सुनने वाले श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: અંજલિ બોન, જેમ કે આજે મનીષજી સરાઈ વતન એણે આપણને ઘણા ઘણી વાતે બતાડી કે પશુધનને પૌષ્ટિક આહાર થકી હારતે મટેગા કુપોષણ, ને એના મેં આપણે જાણ્યું કે સંતુલિત આહાર હું કહેવાય ને અસંતુલિત આહાર કઈ બીમારીને જન્મ આલે હે, એના સાથે આપણે જાણ્યું કે આપણે જે કિસાન ભાઈ બોન હે એ પશુધન તો રાખે છે, તો એ જે ચારો રાખે હે પશુને ખવડાવવા બદલે એનમાં પૌષ્ટિકતા હારતે બઢાવી શકે, ને કઈ વખત એવું થાય અંજલિ બોન કે આપણે ચારાની સમસ્યા આવી જાય તો એ ચારાની સમસ્યા થકી આપણે હર છુટકારો પાઈ શકે, આ સબ વાતે આજે આપણે મનીષજી સર આપણે કિસાન ભાઈ બોનને બતાડી।
1: હવે તો જાગૃતિ બોન, વાતે તો ઘણા કની થઈ ગઈ હે, ને ટાઈમ ભી થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી છૂટા પડવાનો, તો છૂટા તો પડા પણ સાથે પહેલા હામરી લઈ કર ગીત ને મોરે પડા છૂટા
2: હોવે।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
5: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
6: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब अनिमिया ना लक्षण है। होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनिमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते अनिमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं पढ़ने की आदत जीवन बदलने वाली शक्ति को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, कल्पना कीजिए कि हमारे हाथ में ऐसी कोई चाबी हो जो ज्ञान के अनगिनत दरवाजे खोल सके, हमें नई दुनिया से परिचित करा सके, हमारी सोच को बदल सके और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सके। ये चाबी कोई महंगी वस्तु नहीं बल्कि एक बहुत ही सरल आदत है, वो है पढ़ने की आदत।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे पढ़ने की आदत को लेकर।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, किताबें केवल कागज पर लिखे हुए शब्दों का संग्रह नहीं होती है, वे अनुभवों, विचारों, भावनाओं, संघर्षों और ज्ञान का संसार होती है। श्रोता साथियों, एक अच्छी किताब हमें उन लोगों से मिलवाती है जिनसे हम शायद कभी वास्तविक जीवन में नहीं मिल सके। वह हमें उन स्थानों की यात्रा करा सकती हैं जहां हम कभी गए नहीं, और उन परिस्थितियों को समझने का अवसर देती हैं जिनका हमें स्वयं अनुभव नहीं किया। श्रोता साथियों, आज का समय डिजिटल तकनीक का समय है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जानकारी और ज्ञान में अंतर है।
0: जी हाँ।
1: जानकारी हमें, जागृति जी, बहुत कुछ बताती है, जबकि गहराई से पढ़ना हमें समझना सिखाता है। इसलिए आज के तेज जीवन में पढ़ने की आदत पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
0: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि मनुष्य के विकास में पुस्तकों की भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। श्रोताओं, हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव, खोजे विचारों को शब्दों में सुरक्षित किया और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाया। आज हम इतिहास, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, समाज और महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में जो कुछ जानते हैं वो सब पुस्तकों का ही बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल।
0: पढ़ने की सबसे बड़ी विशेषता ये है श्रोताओं कि इसके माध्यम से हम अपने जीवन के सीमित अनुभव से बाहर निकलकर दुनिया के व्यापक अनुभव से जुड़ सकते हैं। अंजलि, एक विद्यार्थी विज्ञान की पुस्तक पढ़कर ब्रह्मांड को समझ सकता है, इतिहास पढ़कर अतीत से सीख सकता है और किसी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़कर संघर्ष और सफलता की कहानी को जान सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किताबें हमारे ज्ञान की सीमा को लगातार बढ़ाती रहती हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, पढ़ने की आदत केवल जानकारी नहीं देती है बल्कि हमारी सोच की क्षमता को भी विकसित करती है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल पैदा होता है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या होगा, क्या इसके बारे में कोई दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है। ये प्रक्रिया हमारी तार्किक सोच को मजबूत करती है जागृति
0: जी। हाँ।
1: नियमित पढ़ने वाला व्यक्ति किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करता कि किसी ने उससे कह दिया, वह उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करता है। विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए यह आदत बहुत उपयोगी है। पढ़ना उन्हें अपने विचार बनाने, सही प्रश्न पूछने और किसी विषय को गहराई से समझने में सहायता करता है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि पढ़ने की जो आदत होती है वो हमारे अंदर आत्मविश्वास को ही बढ़ाती है। आत्मविश्वास केवल बोलने से नहीं आता श्रोता साथियों, बल्कि ज्ञान और समझ से भी आता है। जब किसी व्यक्ति को किसी विषय की अच्छी जानकारी होती है तो वो अपनी बात और अधिक स्पष्टता से रख देता है। मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी विद्यार्थी ने किसी विषय पर अच्छी पुस्तक पढ़ी है, जब उस विषय पर चर्चा होगी तो उसके पास अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त जानकारी होगी, इससे उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। अंजलि, पढ़ने से भाषा और अभिव्यक्ति भी बेहतर होती है। जितने अधिक शब्द हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उतनी ही बेहतर तरीके से हम अपने विचार को व्यक्त कर पाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, भाषा हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है। पढ़ने की आदत भाषा को मजबूत बनाने का एक प्रभावी तरीका भी है। इसलिए श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि जब हम अलग अलग प्रकार की किताबें, कहानियाँ, लेख, समाचार और साहित्य पढ़ते हैं तो हमें नए शब्द मिलते हैं। धीरे धीरे हमारा शब्द भंडार बढ़ाता है और हम अपनी बात अधिक प्रभावी तरीके से कह पाते हैं। विद्यार्थियों के लिए इसका विशेष महत्व है जागृति जी। नियमित पढ़ने से उन्हें लिखने, बोलने, समझने और प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता मिलती है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि पढ़ने की आदत हमारे अंदर किस तरह से होनी चाहिए और ये हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है।
1: जी हाँ।
0: ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने जाना कि पढ़ने से भाषा और शब्द भंडार समृद्ध होते हैं, यही बात करें तो किताबें अच्छे विचारों से जुड़ती है। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी किताब हमारे जीवन में एक अच्छे मित्र की तरह होती है। वह हमें सही और सकारात्मक सोच की ओर ले जा सकती है, क्योंकि महान व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ने से हमें पता चलता है कि सफलता हमेशा आसान रास्तों से नहीं मिलती। महान वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों, साहित्यकारों और राष्ट्र निर्माताओं के जीवन में भी संघर्ष और असफलताएं आई, लेकिन उन्होंने जागृति जी प्रयास जारी रखा। ऐसी कहानियां हमें यह समझाती है कि कठिनाइयां जीवन का अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर हो सकती हैं। जब हम अच्छे विचार पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचारों और व्यवहार में भी उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये भी जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं इसका चयन सोच समझ कर करें।
1: बिल्कुल अंजलि, इसका चयन हमें सोच समझ कर ही करना चाहिए कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम पढ़ क्या रहे होते हैं और हम सोच क्या रहे होते हैं, ये दोनों ही चीजें अलग अलग हो जाती है। तो श्रोता साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि कहानी और साहित्य पढ़ते समय हम शब्दों के माध्यम से अपने मन में दृश्य बनाते हैं और यही हमारी कल्पना शक्ति को विकसित करता है।
0: बिल्कुल,
1: एक कहानी हमें किसी गांव, जंगल, पहाड़ या ऐतिहासिक समय की कल्पना करा सकती है। अंजलि, हम पात्रों की परिस्थितियों को समझ सकते हैं और उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ भी सकते हैं। कल्पना शक्ति केवल साहित्य के लिए जरूरी नहीं है श्रोताओं, विज्ञान, कला, तकनीक और नए विचारों के विकास में भी कल्पना शक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए पढ़ना हमारे रचनात्मक सोच को भी मजबूत करता है।
0: जी हाँ जागृति जी, आज मोबाइल फोन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मोबाइल के माध्यम से शिक्षा, जानकारी और मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध है, लेकिन श्रोता साथियों, लगातार बिना उद्देश्य स्क्रीन पर

0: में बिताना हमारी दिनचर्या को असंतुलित कर सकता है। ऐसे में पढ़ना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि हम अपने दिन में कुछ समय केवल पढ़ने के लिए निर्धारित कर लें, तो धीरे धीरे यह एक सकारात्मक आदत बन सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसका अर्थ यह नहीं है कि तकनीक से पूरी तरह दूरी बना ली जाए। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने समय का संतुलित उपयोग करें। मोबाइल से जानकारी लेने के साथ साथ किताबों से गहराई से सीखने की आदत भी विकसित करें।
1: बिल्कुल अंजलि, कई लोग सोचते हैं कि किताब पढ़ने के लिए रोज घंटों का समय चाहिए। वास्तव में ऐसा जरूरी नहीं है श्रोता साथियों, शुरुआत केवल 15 या 20 मिनट से की जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह का शांत समय, दोपहर का खाली समय या रात को सोने से पहले हम कुछ समय पढ़ने के लिए रख सकते हैं। शुरुआत में छोटी और रुचिकर किताब चुनना बेहतर होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें उस समय रुचि नहीं होती है, तो हम बराबर उन किताबों को पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हम शुरुआत में कोई हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे मन के अनुसार हम किताब चुन सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज कुछ पन्ने भी पढ़ता है तो कुछ महीनों में वो कई पुस्तकें पढ़ सकता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है दोस्तों कि हम एक दिन में कितना पढ़ते हैं, बल्कि ये है कि हम नियमित रूप से पढ़ते हैं या नहीं। छोटी शुरुआत, नियमित प्रयास और निरंतरता, यही पढ़ने की आदत को मजबूत बनाती है।
0: जी हाँ बिल्कुल, जागृति जी कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि शिक्षा केवल विद्यालय, कॉलेज या किसी परीक्षा तक सीमित नहीं है। जीवन स्वयं एक विद्यालय है और हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है।
1: जी हाँ।
0: पढ़ने वाला व्यक्ति उम्र के किसी भी पड़ाव पर सीखना जारी रख सकता है। वह नई तकनीक के बारे में पढ़ सकता है, नई भाषा सीख सकता है और इसी के साथ कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इतिहास और किसी अन्य विषय को भी समझ सकता है। इसलिए पढ़ने की आदत हमें जीवन भर सीखने वाला व्यक्ति बनाती है। यह आदत, जागृति जी, हमें बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। आज हम देखते हैं कि कभी कभी किसी पुस्तक का एक विचार भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कोई कहानी हमें मेहनत करना सिखा सकती है, कोई जीवन हमें संघर्ष से प्रेरणा दे सकती है और कोई विचार हमें अपनी गलतियों पर सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं श्रोता साथियों, जहाँ पुस्तकों और विचारों ने लोगों के जीवन की दिशा बदली। इसलिए किसी पुस्तक को केवल पढ़कर बंद कर देना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि हम उसमें मिले अच्छे विचारों पर विचार करें और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए हमें कुछ सरल कदम अपनाने होंगे, जैसे कि अपनी रुचि के विषय से शुरुआत करनी होगी। अगर कहानी पसंद है तो कहानी पढ़े, विज्ञान पसंद है तो विज्ञान पढ़े, तो विज्ञान की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। रोज पढ़ने का निश्चित समय तय करें, शुरुआत 15 मिनट से भी की जा सकती है। पढ़ते समय महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करें या अपनी नोटबुक में जरूर लिखें।
0: बिल्कुल।
1: पढ़ी हुई चीजों पर परिवार या मित्रों के साथ चर्चा करें, इससे समझ और मजबूत होती है। एक साथ बहुत सारी किताबें शुरू करने के बजाय पहले किताब पूरी करने की आदत जरूर डालें।
0: जी हाँ।
1: पुस्तकालय का उपयोग करें, पुस्तकालय हमें कई विषयों की अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराता है। साथ ही ऐसी सामग्री पढ़े जो हमारे ज्ञान, सोच और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में सहायता करता है।
0: जी हाँ।
1: बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने में परिवार और विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अंजलि। अगर घर में माता पिता स्वयं किताबें पढ़ते हैं तो बच्चे को भी पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हम देखते हैं कि विद्यालय में पुस्तकालय को केवल किताबों का कमरा नहीं, बल्कि सीखने और विचार करने का केंद्र बनाया जाता है।
0: जी जी।
1: बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के अलावा कहानी, विज्ञान, इतिहास, जीवनियां और बाल साहित्य पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। और अगर बच्चों को बचपन से ही किताबों से मित्रता करना सिखाया जाए तो पढ़ना उनके लिए बोझ नहीं बल्कि आनंद बन सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, पढ़ने की आदत एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, लंबे समय तक बना रहता है। यह हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, सोच को गहराई देती है, भाषा को मजबूत करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। हमें जीवन भर सीखते रहने के लिए भी प्रेरित करती है। आज हमारा ध्यान कई दिशाओं में बटा हुआ है।
1: जी हाँ।
0: तब किताबों के साथ जागृति जी, कुछ समय बिताना स्वयं को समय देने जैसा है। जरूरी नहीं है कि हम हर दिन कोई बड़ी पुस्तक पढ़ें। जरूरत केवल इस बात की है कि हम सीखने और पढ़ने की यात्रा को लगातार जारी रखें।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, हर दिन कुछ समय पढ़ने की आदत हमें डालनी है, कुछ नया सीखना है और सीखी हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि किताब का एक पन्ना शायद हमारे जीवन को तुरंत न बदले, लेकिन रोज पढ़ा गया एक पन्ना धीरे धीरे हमारी सोच बदल सकता है। और जब सोच बदलती है तो दृष्टिकोण बदलता है, निर्णय बदलते हैं और अंततः जीवन की दिशा भी बदल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथियों, पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि पढ़ने की आदत केवल ज्ञान पाने का माध्यम नहीं बल्कि बेहतर जीवन की ओर बढ़ने वाली शक्ति है। कहा गया है कि हर दिन एक पन्ना ज्ञान का, हर दिन एक कदम विकास का, पढ़ने की आदत अपना लीजिए श्रोताओं, यही रास्ता है उज्जवल भविष्य का।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे जागृति जी कि आज कार्यक्रम में पढ़ने की आदत, जीवन बदलने की शक्ति को लेकर जो हमारी बातचीत रही है वो हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए श्रोता साथियों, 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, उसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: साथियों, स्वस्थ युवा मजबूत समाज, अच्छी आदतें बने विकास, तन हो स्वस्थ मन हो खुशहाल, युवा बनाए देश को कमाल।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ में आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारशर।
1: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।
0: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर एक नए विषय के साथ में। आज हम बात करेंगे मनीषा हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति की। जी हाँ श्रोता साथियों, युवा अवस्था जीवन का वह समय है जब व्यक्ति अपने सपनों को दिशा देता है, अपने भविष्य की नींव रखता है और अपने परिवार समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन मनीषा, एक मजबूत भविष्य केवल अच्छी पढ़ाई या नौकरी से नहीं बनता, उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य, सही सोच और अच्छी जीवन शैली भी उतनी ही जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: आज के समय में युवाओं के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। पढ़ाई और नौकरी का तनाव, मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक इस्तेमाल, देर रात तक जागना, शारीरिक गतिविधियों की कमी, असंतुलित खान पान और नशे जैसी आदतें धीरे धीरे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आज का सवाल है कि क्या हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें भविष्य को मजबूत बना सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। जानेंगे इस विषय पर ढेर सारी बातों को, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मनोरंजन करवाना चाहेंगे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं युवा स्वास्थ्य और अच्छी आदतें और मजबूत भविष्य को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। युवाओं में ऊर्जा होती है, नई सोच होती है और कुछ नया करने का उत्साह होता है। यही युवा आगे चलकर अंजलि जी हम देखते हैं कि देश, समाज और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथी, युवाओं का स्वस्थ रहना केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि श्रोता साथियों हमने आपको गीत से पहले बताया था कि आज का युवा पढ़ाई, नौकरी, प्रतियोगिता, परीक्षाओं, करियर और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन इसी भागदौड़ भरी जिंदगी में श्रोता साथियों कई बार स्वास्थ्य पीछे छूट जाता है। जैसा कि देर रात तक जागना, सुबह समय पर न उठ पाना, पौष्टिक भोजन

0: जगह फास्ट फूड खाना, मोबाइल घंटों तक चलाना, शारीरिक गतिविधियों का कम होना, और साथ ही अंजलि जी हम देखते हैं कि तनाव है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य वो धीरे धीरे बिगड़ता जाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती है। कई बार छोटी छोटी अच्छी आदतें ही जीवन में बड़ा बदलाव लाती है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह समय पर उठना, पर्याप्त नींद लेना, रोज थोड़ा पैदल चलना या व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, व्यक्तिगत स्वच्छता रखना और तनाव को सही तरीके से संभालना, ये सभी आदतें युवा जीवन को स्वस्थ बना सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: युवाओं को यह समझना होगा कि स्वास्थ्य केवल बीमारी न होने का नाम नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति वह है जो शारीरिक रूप से सक्रिय हो, मानसिक रूप से संतुलित हो और सामाजिक रूप से जिम्मेदार जीवन जी सके। आजकल युवा स्वाद और सुविधा के कारण पैकेट वाले खाद्य पदार्थ बहुत अधिक खाते हैं, तला भुना भोजन, मीठे पेय और फास्ट फूड का अधिक सेवन करने लगे हैं।
0: जी हाँ,
1: कभी कभार मनीषा ऐसा भोजन करना अलग बात है, लेकिन यदि यही रोज की आदत बन जाए तो शरीर पर इसका असर पड़ सकता है।
0: जी हाँ,
1: हमारे आसपास उपलब्ध स्थानीय भोजन, पारंपरिक खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, मोटे अनाज, रागी, मक्का, बाजरा, ज्वार, दूध और उपलब्ध स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ भोजन को संतुलित बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर युवा यह संकल्प ले सकते हैं कि वे भोजन को केवल स्वाद के आधार पर नहीं बल्कि पोषण और शरीर की जरूरत के आधार पर भी चुनेंगे।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत एक व्यवस्थित दिनचर्या से होती है। युवाओं को अपने दिन का एक सरल कार्यक्रम बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि समय पर सोना, समय पर उठना, भोजन का सही समय रखना, पढ़ाई और काम के बीच आराम करना, और साथ ही श्रोता साथियों शारीरिक गतिविधियों के लिए समय निकालना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: दिनचर्या बहुत कठिन या सख्त रखने की जरूरत नहीं है साथियों, बस इतना जरूरी है कि जीवन में नियमितता हो। जब हम रोज एक निश्चित समय पर अपना काम पूरा करते हैं तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारा शरीर और मन दोनों बेहतर तरीके से काम करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सुबह उठने के बाद कुछ समय अपने लिए निकालना भी जरूरी है। पानी पिए श्रोता साथियों, हल्की शारीरिक गतिविधियां करें और साथ ही हमारे दिन की योजना है उसको हमें अच्छी तरह से बनाना है और हमें दिन की शुरुआत अच्छी करनी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आज मोबाइल और स्क्रीन के बढ़ते इस्तेमाल के कारण कई युवाओं की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं।
0: जी हाँ,
1: लंबे समय तक एक ही जगह बैठना शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। हर युवा अपनी क्षमता और दिनचर्या के अनुसार रोज कुछ समय शारीरिक गतिविधियों के लिए निकाल सकता है।
0: जी बिल्कुल,
1: पैदल चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, योग, खेल कूद या घर के काम में सक्रिय रहना। श्रोता साथियों, ये सभी शरीर को सक्रिय रखने के तरीके हैं। व्यायाम का मतलब हमेशा मनीषा जिम जाना नहीं होता है, जरूरी यह है कि शरीर सक्रिय रहे। आज हम देखते हैं कि युवाओं में देर रात तक मोबाइल चलाना और पढ़ाई काम के कारण पर्याप्त नींद न लेने की आम समस्या बनती जा रही है। लेकिन नींद शरीर और मस्तिष्क को आराम देने का महत्वपूर्ण समय है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो शरीर को आराम मिलता है और अगले दिन काम करने की क्षमता बेहतर रहती है।
0: जी बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, युवा देर रात तक बिना जरूरत जागने की आदत से बचें और अपनी दिनचर्या में पर्याप्त नींद के लिए समय रखें। मोबाइल को सोने का साथी नहीं, जरूरत के समय इस्तेमाल होने वाला साधन बनाए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बातें चल रही हैं कि युवा साथी है वो अपने जीवन में स्वस्थ आदतें कैसे अपनाकर अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं।
1: जी जी,
0: तो ये श्रोता साथियों से हमारी बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कि मोबाइल आज हमारी जरूरत बन चुका है। पढ़ाई, नौकरी, जानकारी और संवाद के लिए इसका उपयोग बहुत लाभदायक है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन श्रोता साथियों, समस्या तब होती है जब मोबाइल हमारे समय और दिनचर्या को नियंत्रित करने लगे। लगातार सोशल मीडिया देखना, दूसरों से अपनी तुलना करना और घंटों वीडियो देखते रहना समय की बर्बादी के साथ साथ मन पर भी दबाव डाल सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए युवा खुद से एक सवाल पूछें कि मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ या मोबाइल मेरा इस्तेमाल कर रहा है।
1: जी हाँ।
0: मोबाइल का उपयोग करें लेकिन अपनी नींद, पढ़ाई, काम, परिवार, दोस्ती और स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। श्रोता साथियों, स्वास्थ्य की बात करते समय हम अक्सर शरीर की बात करते हैं, लेकिन मन का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शरीर का स्वास्थ्य। पढ़ाई, रोजगार, परिवार, रिश्तों और भविष्य को लेकर युवाओं के मन में तनाव और चिंता हो सकती है। ऐसे समय में अपनी परेशानी को अंदर दबाकर रखना जरूरी नहीं है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करना, प्रकृति के बीच समय बिताना, पसंद की रचनात्मक गतिविधि करना और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए मनीषा, जहाँ युवा अपनी परेशानियाँ बताने में शर्म महसूस न करे।
1: बिल्कुल।
0: मदद मांगना कमजोरी नहीं है बल्कि अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यही अगर श्रोता साथियों को बताएं कि नशे से दूरी हम कैसे बनाएं, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि युवाओं के स्वास्थ्य के लिए नशे से दूरी बनाना बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: तंबाकू, शराब, अन्य नशीले पदार्थ हैं वो शरीर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक होते हैं। कई बार अंजलि जी हम देखते हैं कि दोस्तों के दबाव में आकर और जिज्ञासा के कारण भी हमारे युवा साथी ही वो नशे की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। लेकिन श्रोता साथियों, किसी गलत आदत की शुरुआत बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। युवाओं को यह समझना चाहिए कि किसी को देखकर या दोस्तों के दबाव में आकर ऐसा व्यवहार करना हमारे लिए जरूरी नहीं है।
0: जी।
1: जरूरत पड़ने पर स्पष्ट रूप से नहीं कहना भी हमारे लिए आत्मविश्वास का एक हिस्सा बन सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ भविष्य के लिए नशे से दूरी ही एक मजबूत निर्णय है।
0: बिल्कुल मनीषा, इसलिए जरूरी है कि युवा एक बार करके देखते हैं वाली सोच से सावधान रहे।
1: जी हाँ।
0: सच्ची दोस्ती वह है जो हमें गलत रास्ते पर न ले जाकर सही दिशा दिखाती है। अगर किसी युवा को नशे की आदत से बाहर आने में परेशानी हो रही है तो उसे अकेला छोड़ने के बजाय परिवार और योग्य स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: व्यक्तिगत स्वच्छता अच्छी स्वास्थ्य आदतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नियमित स्नान, साफ कपड़े पहनना, हाथों की सफाई, दांतों की देखभाल, साफ पानी का उपयोग और आसपास की सफाई रखना बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। युवा केवल खुद स्वच्छ रहे इतना ही पर्याप्त नहीं है, वे अपने परिवार और गांव में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने में भूमिका निभा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: युवा की अच्छी आदत पूरे परिवार और समाज के लिए उदाहरण बन सकती है। श्रोता साथियों, युवा केवल अपने भविष्य के निर्माता नहीं बल्कि समाज के वर्तमान को भी दिशा देने वाली शक्ति है। यदि गांव का युवा स्वस्थ है, जागरूक है, नशे से दूर है, शिक्षा और कौशल के प्रति गंभीर है और अपने स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदार है तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। एक युवा अपने घर में छोटे बच्चों को खेल कूद के लिए प्रेरित कर सकता है, परिवार को पौष्टिक भोजन के महत्व के बारे में बता सकता है, बुजुर्गों की मदद कर सकता है और गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों में भाग ले सकता है। इसलिए स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं छोटा साथियों बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगी कि युवा और स्वास्थ्य का संबंध है वो बहुत गहरा है। युवावस्था में अपनाई गई श्रोता साथियों आदतें जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसीलिए हर युवा को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधियां, व्यक्तिगत स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान, मोबाइल का संतुलित उपयोग और नशे से दूरी जैसी अच्छी आदतें ही उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। श्रोता साथियों, हमें ये याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बीमारी आने के बाद ही याद किया जाए। स्वास्थ्य की देखभाल आज से बल्कि अभी से शुरू की जा सकती है। अंत में श्रोता साथियों आपसे यही कहना चाहेंगी कि आज की अच्छी आदत कल की मजबूत नींव है। स्वस्थ युवा मजबूत समाज की पहचान है और श्रोता साथियों स्वस्थ युवा ही मजबूत भविष्य के निर्माण में अपना अच्छा योगदान दे सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, अच्छी आदत अपनाएंगे स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। आज स्वस्थ युवा बनेंगे तो कल मजबूत भारत गढ़ेंगे।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है युवा और स्वास्थ्य, अच्छी आदतें और मजबूत भविष्य को लेकर, वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागडेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवन। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बना वंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, जहां हम बात करते हैं दोस्तों उन ख्वाबों की जो आंखों से निकलकर हकीकत बनना चाहते हैं, और उन हौसलों की भी जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से आज एक नए विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। साथियों, आज का हमारा विषय है खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है। तो बातें ढेर सारी होंगी इस विषय को लेकर, जानेंगे कि खुद पर विश्वास का क्या मतलब है और ऐसा होना क्यों जरूरी है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों पहले मनोरंजन इस गीत के साथ हम करें। तो आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कि खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है। दोस्तों जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने ही कदमों पर शक करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे जितने अच्छे नहीं हैं। लेकिन साथियों सच क्या है? सच तो ये है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा खुद पर विश्वास ही है। खुद पर विश्वास का मतलब है दोस्तों अपने फैसलों पर भरोसा रखना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और गिरकर भी दोबारा उठने की हिम्मत रखना। क्योंकि दोस्तों जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वो मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी पार कर पाता है। अगर इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, तो दोस्तों एक बार की बात है कि एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था आरव। उसे गाना बहुत पसंद था लेकिन उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं थी। जब भी वो गाता लोग उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और उसने गाना छोड़ दिया। लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा आरव, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। यह सुनकर आरव को थोड़ा अच्छा लगा। उसने फिर से कोशिश की, हर दिन प्रैक्टिस की, गलतियां भी की और उन गलतियों से सीखा भी और आगे बढ़ता गया साथियों। और एक दिन क्या हुआ, आरव यानी कि वही लड़का जो स्टेज पर खड़ा था और लोग उसकी आवाज की तारीफ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि आरव की थी। जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में ही जाना कि जब लोग आरव का मजाक उड़ाते थे तो उसकी वजह से आरव का आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा गया था। लेकिन उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसकी मां उसका सहारा बनी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यहाँ पर आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ की बात की गहराई को समझा और फिर से कोशिश करना शुरू किया साथियों। और अंत में आरव सफल हो ही गया। क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि खुद पर विश्वास करना एक कह सकते हैं कि एक अदृश्य ताकत होती है जिसे हम सभी देख नहीं पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि खुद पर विश्वास करना इतना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप दूसरों की बातों से जल्दी नहीं टूटते। आपके फैसले बेहतर होते हैं, यानी कि आपको किसी भी निर्णय लेने में कंफ्यूजन कम होता है और आप स्पष्ट तरीके से सोच पाते हैं साथियों। आप डर से बाहर निकलते हैं क्योंकि डर तो हमेशा रहेगा लेकिन विश्वास आपको उससे लड़ना सिखाएगा साथियों। और हम जैसा कि जानते हैं कि बिना विश्वास की कोई भी सपना कभी पूरा नहीं होता बल्कि अधूरा रह जाता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे, हम फैसले भी अच्छी तरीके से ले पाएंगे और हमारी सोचने की क्षमता भी दोस्तों स्पष्ट होगी जिससे हम कभी असफल नहीं होंगे। और जो लक्ष्य हमने तय किया है उस पर हम बेहतर तरीके से काम भी कर पाएंगे और सफलता के मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे साथियों। तो जैसा कि बातें मैं आपसे कार्यक्रम के माध्यम से कर ही रही हूं और विषय हमारा चल रहा है बातचीत का कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है और ऐसा हम कर भी कैसे सकते हैं, तो ये बातें आगे भी होंगी। लेकिन अभी मैं आपको सुनवाना चाहूंगी यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में विषय हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, और जैसा कि हम गीत से पहले जान पाए थे कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, अब यही अगर दोस्तों आपको बताएं तो जब हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, खुद पर विश्वास की कमी हर काम को बिगाड़ सकती है। आप हर काम में डर महसूस करेंगे, दूसरों से तुलना आप अपनी करते रहेंगे, और मौके आपके सामने आएंगे लेकिन आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप अपने ही सपनों से दूर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होता है। अब यही सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है तो आपको हर दिन कुछ अच्छा करना चाहिए, जैसे कि आप खुद की तारीफ कर सकते हैं, आप खुद को नई नई चीजों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि जो लोग आपको नीचे गिराते हैं उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, गलती करना गलत नहीं है लेकिन उन्हें दोहराना गलत है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपनी गलतियों से सीख लेनी है, ना कि उन गलतियों को दोहराना है। साथ ही दोस्तों, खुद से आप पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जब हमारे अंदर नकारात्मकता रखते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे कई काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आप खुद से ये कह सकते हैं कि मैं हर काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं बेहतर बन रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, ऐसे पॉजिटिव बातें खुद से करने से होगा ये कि आपके अंदर सकारात्मक चीजें आएंगी, और सकारात्मक होने से आपके सारे काम दोस्तों अच्छे से हो पाएंगे। साथ ही अपने लक्ष्य को भी स्पष्ट रूप से तय आप करें, क्योंकि जब लक्ष्य साफ होगा तो विश्वास अपने आप ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप आज ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो एक बार रुकिए और खुद से ये पूछिए कि क्या आपने कोशिश की, क्या आपने खुद पर भरोसा किया। अगर जवाब नहीं आता है दोस्तों, तो आज से ही आपको शुरुआत करनी है खुद पर विश्वास करने की, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, प्रयास करना न छोड़ें, क्योंकि जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं तो हम चाहकर भी उस काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि दुनिया में हर सफल इंसान की कहानी एक जैसी होती है। उन्होंने खुद पर विश्वास किया, जब कोई और उनके साथ नहीं था तब भी उन्होंने खुद पर विश्वास रखा, जब रास्ते मुश्किल थे, जब हालात उनके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कभी हार नहीं मानी, और आज वही लोग हमारी प्रेरणा बन चुके हैं। साथियों, हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई अच्छी आदत छिपी हुई होती है, और उसी अच्छी आदत को हमें पहचानना है। क्योंकि दोस्तों, सफल तो हम सभी होना चाहते हैं, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में सफल होना चाहता है, लेकिन बस कमी ये रह जाती है कि हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज से खुद पर विश्वास करें, खुद से ये कहें कि जो काम दूसरे कर सकते हैं वो काम मैं भी कर सकता हूँ, जिस काम में मैं असफल हुआ हूँ उसमें सफलता प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है। अगर ऐसी सकारात्मक बातें आप खुद से करेंगे दोस्तों, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमने जाना कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, तो ऐसे में याद रखे दोस्तों कि आपका सबसे बड़ा दोस्त आप खुद हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है, इसलिए अपने सपनों को पंख दीजिए और एक लंबी उड़ान भरिए श्रोताओं, क्योंकि आसमान उन्हीं का होता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ अब जैसा कि बातें मेरी आपसे कार्यक्रम में ढेर सारी हो चुकी है, और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान। अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी की इस दौड़ में सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है दोस्तों, तो वो है आपका खुद पर विश्वास। हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, रास्ते कितने भी उलझे हुए क्यों न हो दोस्तों, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कभी भी खुद को कम मत आंकिए, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है साथियों, जो आपको आपकी हर मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो आज से ही एक वादा कीजिए खुद से, अपने सपनों से और अपनी मेहनत से कि चाहे जो भी हो जाए, आप खुद पर विश्वास कभी नहीं खोएंगे। क्योंकि दोस्तों, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और हौसलों की शुरुआत होती है खुद पर विश्वास से। इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नई उड़ान भरे विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ दोस्तों, नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो, पानी बचावो, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा

0: ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है जिसका मतलब है रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।
1: जागा

साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।